德里广播电台就是普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राज तिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धूरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे

भी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

कप्रिसिडेनन इंडिया बरुपाया मम्बरिकन कसी कसिनाबुंगन साम्बिल मंदोरोंग कपरचाया अन यांगलेबी बसार दी अंतारा दुनिया उत्साह इन्वेस्टोर दान इन्वातोर सरता ममाजुकान कर्जा समा प्राक्टिस यांग मंग हासिल कान हासिल हासिल नियाता बागी समूह अंगोता ब्रिक्स मंत्री प्रतागागान दान इंडस्ट्री मंग इन्फॉर्मासी कान कपाडा पारा पसरता मंगेनाय कमाजुआन सिग्निफिकान यांग दिचापय दिबावा कपरसिदिनन ब्रिक्स इंडिया मलालुई पातनीर बलियाऊ जुगा मनियोरोटी हासिल हासिल दारी मुसियावारा मुसियावारा एक्सटेंसिव यांग दिलाकुकान ओले कलम्पोक पर नासिहात दान कलम्पोक कलम्पोक कर्जा तर्मातिक दी एम्पात बिडंग प्रियोरिटास यांग दी आइडेंटिफिकासी ओले इंडिया यांग बर्तुजवान उन्तुक मंबांगुन मेकानिज्मे मेकानिज्मे इंस्टीट्यूशनल यांग ताहन नामागुना मंपर दलाम कर्जा सामा इंडस्ट्री दी अंतारा नगर नगारा अंगोता ब्रिक्स हाल हाल तरसबूत मंचाकुप फिनालिसासी करांका कर्जा सामा दलाम कलम्पो कर्जा UKM अताउ स्मॉल दान मीडियम इंटरप्राइजेस उसाहा कचिल दान मंगेना अदोप्सी करांका अचुआन दान रेंचाना आक्सी उन्तुक कलम्पो कर्जा तेंतांग इंडस्ट्री फोटो वोल्टालिक सरता फिनालिसासी रेंचाना आक्सी मंगेनाए प्रथम वुहान यांग दिमिंपिन ओले इनोवासी ओले परुसाहन परुसाहन रिंतीसान लेबी लांचुत पेंटिंग निया सिस्टम सिस्टम ट्रांसपोर्टासी दान लॉजिस्टिक यांग तरकाइत इंडस्ट्री यांग तांगु तरमासुक परेंचाना अन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बासिस GIS अताउ जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिस्टम इन्फॉर्मासी जो जियोग्राफिक्स दान परेंचाना अन लॉजिस्टिक कोता जुगा दिसोरोती हासिल उतामा दारी प्रतिमुआन तरसबूत अदाला अदोप्सी डिक्लरासी बरसामा प्रतिमुआन मंत्री इंडस्ट्री ब्रिक्स का सपुलू डिक्लरासी तरसबूत मंचरमीन कान कमिटमेंट कलेक्टिव नगारा नगारा अंगोता उन्तुक बर्गेरा मलम मालाम पायुई देवालोग मनुंजु इम्प्लीमेंटासी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट कर्जासामा प्रैक्टिस दान मम परकुआत इंडस्ट्री इंडस्ट्री दान मन इंगात कान क हिदुपान मशियाराकात सलामा प्रतिमुआन पारा मंत्री इंडस्ट्री दान कपाला कपाला देलीगासी दारी नगारा नगारा अंगोता ब्रिक्स बरबागी पर्सपेक्टिव नेशनल मरेका मनियोरोटी इनिशियाटिव इनिशियाटिव क बीजाकान उतामा प्रियोरिटास प्रियोरिटास दान पंचापियान पंचापायन दानम मंपर मोसिकान पंबांगुनान इंडस्ट्री परनियाता आन तरसबूत मनेगास्कान कमिटमेंट बरसामा उन्तुक मंपर कुआत क मंपुआन इंडस्ट्री मंपर चेपात ट्रांसफॉर्मासी डिजिटल दान टेक्नोलॉजी मंदोरोंग इकोसिस्टम इकोसिस्टम इंडस्ट्री यांग तांगु दान इंक्लूसिव सरता मन इंगातकान कर्जासामा उन्तुक मंगतासी तांतांगान पंबांगुनान यांग उमुम नगारा नगारा अंगोता मनेगास्कान कंबाली पेंटिंग निया पार्ट एनियर सबागाई प्लेटफॉर्म उतामा उन्तुक ममाजुकान कोलोब्रासी प्रैक्टिस बर्बागी पंगताहुआन पन इंकातान कपासितास दान इनोवासी इंडस्ट्री दी अंतारा अंगोता अंगोता ब्रिक्स डेलेगासी जुगा मनियम्बुत बाइक कमजुआन यंग दी चपय दी बाबा क प्रसिदेनन इंडिया ताहुन दुआरी बुद्धुआ पुलु एनम मन चातात बाबा इनिशियाटिव यंग दी आंबिल दी बाबा पात एनियार अकान बर कॉन्ट्रीब्यूसी पाडा पंगुआतान कर्जासामा इंस्टीट्यूशनल मंडोरोंग इनोवासी दान पर इंगातान कपासिता स्तरता मंडुकुम पंगंबांगान इंडस्ट्री इंडस्ट्री यंग तांगु कॉम्पिटिटिव दान सियाप मंगहडापी मासा दे पांदी सलुरु ब्रिक्स इंडिया दी बाबा कप्रिसिदेनन ब्रिक्स निया जुगा मंजादी तुहान तुहान रुमा प्रतिमुआन मंत्री परदागागान ब्रिक्स क एनम्बलास अताउ एनम्बलास ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर मीटिंग दी जयपुर राजस्थान पाडा तांगाल तुजु अगस्तुस दुआरी बुधुआ पुलु एनम मनीसुल प्रतिमुआन कतिगा कलम्पो कोंताक ब्रिक्स तंतांग इशू इशू इकोनॉमी दान परदागागान अताउ ब्रिक्स कोंताक ग्रुप ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड इशू यांग दी अदाकान पाडा तांगाल तिगा दान एम्पात अगस्तुस दुआरी बुधुआ पुलु एनम दी न्यू दिल्ली प्रतिमुआन तरसबूत अकान मम पर तेमुकान पारा मंत्री परदागागान दान पजाबात पजाबात सीनियर दारी नेगारा नेगारा अंगोता ब्रिक्स उन्तुक बर्मुसिया

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है।

0: है। ये अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार

0: के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की

0: सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कावड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pehelgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Saagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defence, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboori.

0: At IIT, headlines the Asian Age. PM asks students to put nation's interests over personal gains, leads Hindustan Times. Meta told to give plan to revamp algorithms, writes the Tribune. CBI charge sheet names three NTA experts as key links in NEET UG 2026 paper leak, informs the Statesman. Ladakh logs 56.15% surge in July footfall of tourists, reads a top story in the Asian Age. The paper adds, PM push gave domestic tourism boost. Ladakh's tourism sector is experiencing one of its strongest phases in recent years, with visitor numbers climbing sharply and consistently throughout 2026. The Financial Express writes, no charges for UPI users, small merchants, clarifies the government. In a piece titled Growing Old, the Statesman argues, for generations, aging was associated with restraint. People slowed down, spent less, took fewer risks and gradually ceded social and economic space to younger generations. That understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, Hilsa fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after Bairaj cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है। ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरीरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और सगनिक रॉय और सयांतन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म जनाब मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं। कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57वें जलसे तकसीम असनास से खिताब करते हुए उन्होंने सेमी

0: ट्रैक्टर, खला और ड्रोन्स जैसे शोबों का जिक्र किया और कहा कि भारत तमाम शोबों में खुद कफील बनने की सम्त में काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि खुद किफालत की ये कोशिश विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो कौमी मफाद को अपने फैसलों के मरकज में रखें।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़िश्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद, वक़ार और मजमूई कौमी शनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत और कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाए जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा योम आज़ादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाईस होने वाली तकलीफों, मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने, हाई कमिश्नर और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद करेंगे। इस साल की अहम तकरीब सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशन्स शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात पुद्दुचेरी पहुंचे जहां लोक निवास में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त जनाब शाह गोरी मैदू के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मैदान में पुद्दुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट।
3: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह बावकार प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अता किए जाने की तकरीब में पुदुचेरी पुलिस को खसूसी परचम पेश करेंगे। सदर जमहूरिया ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस को उनकी गैर मामूली खिदमात, नज्म जब्त और मुमताज हसूलियाबियों के एतराफ में पुलिस कलर अता किए जाने का ऐलान किया था। इस मौके पर पुलिस की मुख्तलिफ शाखों के जवान खसूसी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीब में पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन, वजीर आला एन रंगासामी और उमूर दाखिला के वजीर एम ए निमिश्वाम भी मौजूद हैं। दोपहर को जनाब शाह पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पुदुचेरी से विभिन्न इसनाद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आजादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिल फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्ला इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने अपनी बेमिसाल जुर्रत और अज़्म के जरिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल उसके अवाम की मिल्कियत।

0: शामिल हैं। मद्रास हाई कोर्ट में मजमूई तौर पर 15, कलकत्ता हाई कोर्ट में 8, कर्नाटक हाई कोर्ट में 6 और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1 जज की तकरीरी अमल में आई है। ये तकरीरियां सदर जमहूरिया ने भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मशावरत के बाद की हैं। नए तकरीर करदा जजों से तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में अपने ओहदे का हलफ लेकर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इन तकरीरियों से चारों हाई कोर्ट्स में जजों की खाली आसामियों को पुर करने और जेर इल्तवा मुकदमात के जल्द निपटाने में मदद मिलने की तवक्को है। JPSC और JSSC की भर्ती के इम्तहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले झारखंड के तलबा आज रांची में रियासती हुकूमत के नुमाइंदों के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे। पेश एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का अगला दौर आज दोपहर के करीब होने वाला है। हुकूमत की कमेटी ने वजीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तलबा के साथ पहले दौर की बातचीत में होने वाली पेशरफ से उन्हें आगाह किया। हुकूमत और एहतजाज करने वाले तलबा के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान आला सतह की बातचीत का पहला दौर कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमत के नुमाइंदों ने कहा कि वो इम्तिहान के निजाम में जामे इस्लाहत के लिए पुरअज़्म हैं। इसी दौरान तलबा रहनुमा रविन्द्र पासवान ने कहा कि तलबा गुज़श्ता 15 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अपने मुतालबा तफसील के साथ हुकूमत के सामने रख दिए हैं। तलबा का कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती उनकी तहरीक जारी रहेगी। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जजायर में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान अब्र आलूद रहेगा और यहां हल्की बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की है। आज बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली के लिए तेज से बहुत तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और चंपावत जिलों के लिए बाज मकामात पर शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कान के बायस येलो अलर्ट के तहत रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज रियासत के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का इम्कान है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भी तेज से बहुत तेज बारिश की वार्निंग जारी की गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पावड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में बाज मकामात पर तेज बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हालात के पेश नजर कुदरती आफात से निपटने और बाद आबादकारी के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने तमाम मुतालिका अजला को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी है। महकमों को जरूरी वसायल और आलात तैयार रखने और सड़कों पर रुकावट पैदा होने की सूरत में उन्हें फौरी तौर पर साफ करने की हिदायत भी दी गई है। देहरादून से साक्षी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: जम्मू कश्मीर में हालिया बारिश, रास्तों की मरम्मत के काम और आइंदा चंद दिनों में खराब मौसम की पेशगोई के बायस आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। यह फैसला यात्रियों की हिफाजत के पेश नजर एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। रामबन जिले समेत कश्मीर के बाज इलाकों में बारिश और खराब मौसम के हालात के पेश नजर एहतियाती तौर पर कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रियों के किसी नए काफिले को रवाना होने की इजाजत नहीं दी गई। 3,336 यात्रियों ने कल पवित्र गुफा के दर्शन किए और सरहदी सड़क तंजीम BRO खराब रास्तों की मरम्मत और देखभाल का काम अंजाम दे रही है। हुक्काम ने यात्रियों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी हिदायत और एडवाइजरी पर अमल करें। चीन के हेफई में मुनक़िदा 9वीं आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सियानतन कुशारी ने 31 साल तक की जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। पहले मरहले के आखिरी राउंड में 34 जोड़ियों ने हिस्सा लिया और सरफहरिस्त 14 जोड़ियां, जिनमें भारतीय जोड़ी भी शामिल है, फ्लाइट ए में पहुंच गईं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया शबाना। قومی راجدھانی دلی سے شاید

0: होने वाली आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम के आईआईटी दिल्ली के 57वें सालाना जलसे तकसीम असनाद तकरीब से खिताब की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तलबा से कहा कि नौजवान बाख्तियार होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि आइंदा 20 से 30 साल बाद दुनिया कैसी होगी। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को शाये करते हुए सुर्खी बनाया है, गैर रुकाजी ईंधन साफ सुथरी तवानाई की ताकत और अजाइम की अलामत है। रोजनामा इनकलाब ने एक और अहम खबर को सुर्खी बनाया है, दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को मजबूत बनाने के लिए 187 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे सौंपी।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है, ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाई कोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकरूरी को नोटिफाई किया गया है। रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बाइस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और सगनीक रॉय और सयातिन कुशारी ने नवे आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य की अनवरत धारा में आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी शख्सियत की रचनात्मक यात्रा पर जिनकी लेखनी ने शब्दों को नए आयाम दिए हैं। श्रोताओं, जयराम शर्मा एक ऐसे कवि रहे हैं जिनका बचपन साहित्य के गलियारों में गुजरा। पुस्तकालय हमेशा इनके प्रार्थना घर रहे, अध्यापक और अग्रज साहित्यकार इनके मार्गदर्शक रहे। कविताएं लिखना इनका महज शौक नहीं रहा, बल्कि एक वरदान के रूप में भी इन्हें साहित्यिक गुण मिले। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही इनके भीतर कविताओं के प्रति गहरा प्रेम पनपा और कविताओं की इसी आभा ने इनके जीवन को रोशन किया। इनकी कविताओं की प्रस्तुति इनको सदा लुभाती रही और इनके मार्गदर्शक सदा इन्हें प्रेरित करते रहे। आगे जाकर श्री जयराम शर्मा खुद मार्गदर्शक के रूप में सामने आए। मंच पर आज इन्हें बहुत बड़े कवि का दर्जा प्राप्त है। प्रिंट और सोशल मीडिया पर भी इनकी रचनाएं सराही जाती रही है। आज इस मोड़ पर आते हुए उन्हें अनेक अवरोधों और रुकावटों का सामना करना पड़ा है। साहित्य ऐसे ही अवरोधों से परिमार्जित होता रहा है। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं इनसे भेंटवार्ता। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और गीतकार डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी।
3: नमस्कार साथियों, मेरी साहित्यिक यात्रा के कार्यक्रम में आज मिलते हैं एक वरिष्ठ साहित्यकार पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी से, जो हमारे मध्य में जालंधर से पधारे हुए हैं। शर्मा जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: शर्मा जी, आप छंदों पर बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि कविता में रुचि कैसे पैदा हुई और फिर आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से आपने शुरू की?
4: मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी साहित्यिक यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय विद्यालयों में अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी, उसमें जीतना होता था और कई बार कुछ भूल गए तो कुछ नई तुकबंदियां करके सुनाते थे।
3: अच्छा।
4: इस प्रकार से तुकबंदियां शुरू हुई।
3: अच्छा।
4: धीरे धीरे करके मैंने अपने मित्रों को सुनाना प्रारंभ किया, कुछ जोड़ तोड़ करके लिखना शुरू किया और वहीं से प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे करके प्रतापगढ़ शहर में कुछ काव्य गोष्ठियों में गया, कुछ मित्रों से मिला और फिर उन लोगों ने मेरा परिचय और लोगों से कराया और इस प्रकार धीरे धीरे करके मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हो गई।
3: हाँ, इस तरह मतलब स्थानीय मंचों पर आप
4: स्थानीय मंचों पर।
3: अभी आपके पीछे एक पुस्तक आई थी, जटायु शतक। जटायु तो पौराणिक पात्र है और ये पक्षी है, आमिष भोगी पक्षी है, तो जटायु को आपने अपने कविता का पात्र कैसे बनाया? प्रायः हमने देखा नहीं है कि ऐसा होता है।
4: जटायु पर लिखने के पीछे जो कारण था, प्रारंभ में रामलीलाएं खूब देखा करता था।
3: अच्छा।
4: रामलीला में जब मंचन होता था इस पात्र का, तो अचानक से मन में ये कवि हृदय जागा और एक भावना पैदा हुई कि एक ऐसा पक्षी

0: जिसका सीता से कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति या तो अपने लिए या अपनों के लिए या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संघर्ष करता है, लेकिन इसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। और निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा के लिए, नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और यही बात मन को छू गई और फिर मानवीय मूल्यों की जो बात इसके माध्यम से आई, जो इसने समझाया वो बात मन को छू गई। और फिर वहीं से ये प्रेरणा मिली कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और जटायु का जो यही कार्य है कि मन को छू गया और इस पर कुछ लिखने की बात आई कि निस्वार्थ भाव से नारी के सम्मान की रक्षा के लिए, एक पक्षी हमारे देश का भी मानवीय मूल्यों के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से युद्ध करता है उस समय के सबसे बड़ी महाशक्ति रावण से, और उसके प्राण भी चले जाते हैं लेकिन फिर भी उसकी वो परवाह नहीं करता।
1: जैसा आपने बताया कि आप मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो फिर आप जालंधर कैसे पहुंच गए?
0: काव्य जगत से ख्याति तो खूब मिल रही थी, लेकिन पेट का जो साधन था, रोटी का जो साधन था, उसी रोजी रोटी के चक्कर में मैं जालंधर पहुंचा। वहां चूंकि मेरे नाना जी रहते थे, उनके पास गया। धीरे धीरे उन्होंने मेरा परिचय कराया। मैं उन्हीं के माध्यम से कर्मकांड के क्षेत्र में आ गया, कुछ उनसे सीखा, कुछ पहले से जानकारी थी, और फिर इस कार्य में मैं आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके वहीं का ही होके रह गया।
1: तो अभी भी आप प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, मंचों से जुड़े हुए हैं?
0: हाँ हाँ जुड़े हुए हैं। जब भी आना जाना होता है, कोई विशेष कार्यक्रम होता है, लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। तो जालंधर में भी और प्रतापगढ़ में भी समान रूप से वहाँ पे कार्यक्रम करता हूँ, जुड़ा हूँ।
1: तो आपकी ये जो जटायु शतक है, ये कहाँ से शुरू हुई और ये आपने जालंधर में लिखा या अपने गांव में लिखा?
0: नहीं, प्रारंभ तो एक गांव से ही हुआ था।
1: अच्छा।
0: प्रारंभ मैंने लगभग 25-30 छंद, जब मैं जालंधर नहीं आया था तब के पहले का लिखा हुआ था। फिर वहां पर त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यह आप जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, इसे खंडकाव्य का रूप दीजिए। फिर मैंने प्रयास करना शुरू किया धीरे धीरे करके, कुछ छंद, क्योंकि जटायु पर कहीं कुछ मिलता नहीं है, मानस में भी कुछ पंक्तियां हैं, वाल्मीकि जी में भी थोड़े श्लोक ही हैं, तो इस प्रकार से उस पर सामग्री उपलब्ध नहीं थी। फिर भी भगवत कृपा से, माँ भारती की प्रेरणा से धीरे धीरे करके, अपने जो मिष्ट मित्र हैं उनके कुछ मार्गदर्शन से, कुछ उनके प्रोत्साहन से, धीरे धीरे करके वो छंद पूरे हुए और ये 108 छंदों का ये खंडकाव्य संपूर्ण हुआ।
1: शर्मा जी बताइए कि प्रायः है लोग अपनी फुटकर कविताओं का संकलन निकालते हैं और आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई और दोनों ही खंडकाव्य हैं, पहला तो जटायु था और दूसरा आपका श्रुतकीर्ति आया है अभी अभी।
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि फुटकर रचनाएं तो मैंने लिखी हैं, प्रारंभ में लिखता भी रहा हूँ, आज भी बीच बीच में लिखता रहता हूँ, लेकिन प्रकाशन की जो बात आई वो हमने ये हुआ कि जो खंडकाव्य है पहले इसको प्रकाशित किया जाए, फिर बाद में जो अपनी रचनाएं हैं उनको संग्रहित करके और एक नई पुस्तक देने का प्रयास करूंगा। जल्द ही ईश्वर की कृपा होगी तो वो जल्दी आ जाएगी।
1: तो एक चीज बताएं कि चलिए आपने जटायु पर लिखा, आपको जटायु रामलीला में आपने उसका रोल देखा, वो आप उससे प्रभावित हो गए, लेकिन आज तो AI का युग है और AI के युग में समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, कविता को समाज के साथ चलना पड़ता है, तो पौराणिक पात्र जटायु को आपने आज के समाज से कैसे जोड़ा, कहाँ जोड़ा और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है भी?
0: देखिए, अतीत की नींव पर भविष्य का महल खड़ा होता है और यह काम वर्तमान करता है,
1: ठीक बात है।
0: और कभी एक साथ में दो संसार के बारे में सोचता है, एक पहले वो संसार जो इस समय वर्तमान में है और दूसरा जो आने वाला है, जो या कवि चाहता है। किसी भी कवि की कविता इन दो दुनिया के बीच में पुल का काम करती है और जटायु शतक का भी यही उद्देश्य है। आज AI का युग है, मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, खूब विकास कर रहा है, परंतु इस विकास की धारा में मानवीय मूल्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और यह स्थिति बनी है समाज में कि भौतिक रूप से संपन्न होते हुए भी समाज आज नैतिक रूप से बहुत ही पिछड़ जा रहा है, विपन्न होता जा रहा है। जटायु नैतिक विपन्नता के इस युग में नैतिकता की एक ज्योत बन करके आया और मैंने जटायु के माध्यम से भौतिक रूप से संपन्न समाज को यह बताने का प्रयास किया है कि जिस देश में एक पक्षी नारी सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजा रावण से भिड़ जाता है, आज उसी देश में जगह जगह नारी का अपमान हो रहा है और हम मौन है।
1: चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आपने जटायु ने जो नारी के सम्मान में अपने प्राण की आहुति दी उसका संदेश आप आज के समाज को देना चाहते हैं, लेकिन श्रुतकीर्ति को आपने विषय बनाया तो इसकी यात्रा कब से शुरू हुई और ये श्रुतकीर्ति भी पौराणिक पात्र है, उसी रामायण की पात्र है?

0: जिसका जटायु है, तो श्रुतकीर्ति को आपने पात्र क्यों बनाया, कहां से आपको इसकी प्रेरणा मिली आपको?
1: देखिए, मैं चूंकि कर्मकांड से जुड़ा हूं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रवचन सुनना, ये मेरे जीवन का अंग है। राम कथा सुनने के दौरान एक बार जब इसका प्रसंग आया श्रुतकीर्ति का, उस प्रसंग में श्रुतकीर्ति के व्यक्तित्व को बड़े गरिमामय तरीके से बताया गया, और यह प्रसंग सुन करके मुझे एहसास हुआ कि यह चरित्र तो सीता और उर्मिला की तरह ही बहुत ही श्रेष्ठ है और इसे समाज के सामने लाना चाहिए। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया तो कहीं कुछ नहीं मिला। फिर ईश्वर की कृपा से दो चार छंद लिखे गए, दो चार छंद मित्रों को सुनाए, और फिर सबको अच्छा लगा कि नहीं, अच्छा है, इस पर लिखा जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके प्रसंग को जोड़ा, कुछ और बातें सुनने लगा प्रसंगों को, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे मित्रों के द्वारा, कुछ प्रोत्साहन के द्वारा, और इस महान चरित्र को समाज के सामने लाने के लिए जो प्रेरणा मुझे मिली, वो हमारे कवि मित्रों से चर्चा के दौरान और उनके उत्साहवर्धन के साथ ही इसका धीरे धीरे करके प्रारंभ हुआ और ये आपके सामने प्रस्तुत है।
0: तो इस खंड काव्य का क्या उद्देश्य आप बताना चाहते हैं? क्योंकि एक नारी पात्र है और पौराणिक है, वो आज की महिलाओं से बिल्कुल अलग है, तो उसको क्यों, आज की महिलाओं के संदर्भ में आप उसको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आधुनिक युग की महिला को?
1: श्रुतकीर्ति राम कथा की उन स्त्री पात्रों में से एक है जो शांत भाव से अपने पारिवारिक, सामाजिक और अपने धर्म का पालन कर रही है। उसका अस्तित्व राम कथा में उपस्थित तो है, लेकिन वो केवल राजमहल की चहर दीवाली में बंद है। उसकी आवाज पौराणिक इतिहास और साहित्य में प्रायः अनसुना सा है। आज का युग आत्म प्रचार और दिखावे पर केंद्रित है, ऐसे में बिना किसी स्वार्थ के अयोध्या के संपूर्ण राजमहल की व्यवस्था को संभालती हुई यश और सम्मान की आकांक्षा से परे नारी के मौन त्याग और उसका जो उत्तरदायित्व है उसको स्वर देना और समाज के सामने लाना, ये मुझे प्रासंगिक लगा और इसलिए मैंने इसको चुना और यही उद्देश्य था इसका सबको लाने का।
0: मैंने आपकी ये पुस्तक पढ़ी, आपने इसका प्रारंभ जो है कौशल्या और श्रुतकीर्ति के संवाद से शुरू किया है, तो इसका क्या कारण है?
1: देखिए, राम के बन जाने के बाद राज परिवार में एक उदासी का वातावरण छाया हुआ था, ऐसे में खंडकाव्य का प्रारंभ कौशल्या और श्रुतकीर्ति के संवाद से करना वातावरण को थोड़ा सामान्य बनाना था, उसका एक प्रयास था। श्रुतकीर्ति पुत्रवधू है, अपनी सासू माँ की चरण सेवा कर रही है और उस चरण सेवा के द्वारा रिश्तों में गर्माहट लाने का प्रयास करती है, अपने पुत्र वधू धर्म का पालन करती है और माँ तुल्य सास की सेवा कर पारिवारिक मर्यादा का पालन करती है और समाज को संदेश देती है कि कर्म परायणता ही परिवार और समाज और देश के लिए धर्म परक है। और दूसरी तरफ माँ कौशल्या का श्रुतकीर्ति के मलिन गात को देख करके प्रश्न करना, क्या शत्रुघ्न तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता, यह दृश्य इस खंडकाव्य को एक नया रूप देता है, नया भाव देता है। यह प्रश्न मातृत्व भाव की चिंता और नारी संवेदना की पहचान से उत्पन्न होता है और यह भाव अपने छोटे का ध्यान रखने का भाव है तथा परिवार के बड़े लोगों का अपने छोटों के प्रति कर्तव्य भी है और उसका धर्म भी है।
0: तो ये कारण रहा कि आपने जो है वो,
1: हाँ, इसका प्रारंभ उन दोनों के संवाद से मैंने शुरू किया,
0: संवाद से शुरू किया है। ये पात्र जो पौराणिक पात्र है श्रुतकीर्ति, वो आज कैसे प्रासंगिक हो रही है?
1: देखिए, आज के बदले हुए समाज में संयुक्त परिवार अपनी गरिमा खोता जा रहा है। लोग आज न्यूक्लियर परिवार में विश्वास करते हैं जबकि सबको समाज की आवश्यकता है। आज श्रुतकीर्ति उन महिलाओं को संदेश देना चाहती है कि घर को संभालना और बड़ों की सेवा करना, परिवार को भावनात्मक संबल देना अनावश्यक मानना नहीं है। आजकल स्त्रियां उस परिवार में जाना चाहती हैं जहां सबसे छोटा परिवार हो, जबकि गृहिणी होना कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति है। परिवार में बड़ों की सेवा और सम्मान करना सनातन संस्कृति की पहचान है। संस्कृति का आचरण यह संदेश देता है कि जब परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ निष्ठा से निभाता है तो यह अपनापन परिवार को मजबूत करता है और यही एकता अंततः समाज और राष्ट्र को भी सुरक्षित और संरक्षित करती है। और श्रुतकीर्ति की यह दृष्टि जीवन को संतुलित, शांत और मूल्य परक दृष्टि है। और यह बताती है कि परिवार, समाज और राष्ट्र केवल अधिकारों से नहीं, कर्तव्य

0: कर्तव्यों की चेतना से भी चलता है। संस्कृति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि परिवार की एकता समाज और राष्ट्र की स्थिरता का मूल आधार है और पुरुषों की तरह परिवार की हर स्त्री का सहयोग और उसका अपनापन पूरे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखता है। सुतकीर्ति यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में मुखर होना ही शक्ति नहीं है। कई बार मौन धैर्य और संयम संबंधों को टूटने से बचा लेते हैं। प्रेम और त्याग से ही संबंध जीवित रहते हैं। सुतकीर्ति समाज को भी यह संदेश देती है कि एकता किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा से नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार से चलती है और जीवन में महानता किसी प्रदर्शन से नहीं बल्कि त्याग और मर्यादा से आती है।
1: तो आपने संवाद के माध्यम से सुतकीर्ति में भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन जटायु शतक में आपने संवाद क्यों डाला?
0: क्योंकि जटायु में रावण के साथ उसका संवाद है और जटायु की जो चिंता है वो ये है कि रावण एक राजा है और राजा स्वयं में एक पूरा समाज होता है और समाज का रक्षक होता है और साथ ही साथ वह सामाजिक मूल्यों का, नीतियों का, परंपराओं का और नारी सम्मान का भी रक्षक होता है। इसीलिए जटायु एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह, एक कुशल धर्मशास्त्री की तरह राजा को राजधर्म समझाता है जो स्वयं राजा द्वारा ही बनाया गया है। वह जानता है कि राजा यदि स्वयं अनाचारी हो जाएगा तो अपनी प्रजा को दरिंदा होने से कैसे रोक पाएगा। इसीलिए जटायु का रावण से संवाद करना, धर्म का मर्म समझाना, रावण को अनैतिक कार्य करने से रोकना था ताकि समाज को दरिंदा होने से बचाया जा सके।
1: आप अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए, कुछ अपने कुछ फुटकर रचना, कोई छंद अपना सुतकीर्ति से या अपना जटायु शतक से।
0: सबसे पहले मैं सुतकीर्ति का पहला छंद है, प्रारंभ जहाँ से होता है वही समय सुनाता हूँ कि माँ तो कौशला ने एक रोज यूं ही पूछ लिया, तेरे गात बिटिया मलिन कैसे हो गए, शत्रुहन ठीक से ख्याल रखता नहीं क्या, आज कान खींचती हूँ बड़े दिन हो गए, चरण दबाती श्रुति कीर्ति ने निहारा जैसे, सजल नयन दिव्य आंचल भिगो गए, कैसे समझाऊं क्या बताऊं क्या कहूं माँ, क्योंकि इनके दर्श को तो 13 वर्ष हो गए, कैसे समझाऊं।
1: और सुनाइए।
0: और इसी क्रम में जब श्रुति कीर्ति के विषय में कौशल्या उस दासी से पूछती है कि इसका ये हाल कैसे हुआ है, आप सब सेवा नहीं करती क्या, तो वो जो बताती है छंद देखें कि रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु, दिवा स्वप्न सदिश अधूरी रह जाती है, काली अंधियारी जो अमावस की रजनी में बिना चंद्र दर्श चकोरी रह जाती है, बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है, अखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती।
1: क्या बात, अच्छा है, अच्छा है भाई।
0: अब कौशल्या क्या सोच रही है कि सोच रही माता कैसी विधि की विडंबना है, कि फूल जैसी बेटियां झुलस गई छांव में, कंटकों पे चलने को हुई ओ विवश आज, पुष्प पंखुरी भी चुभती थी जिन पांव में, निष्ठुर नियति के कुचक्र से विदग्ध दिव्य जैसे कोई हिरनी शिकारियों के गांव में, और अपनी विवशता पे हाथ मले बार बार, मानो हुई हार आज जिंदगी की दाम में।
1: अच्छा है।
0: जब सुतकीर्ति से पूछती है माँ कौशल्या कि बेटी तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ, तुम इस तरह क्यों रहती हो, तो उसका उत्तर जो है सुतकीर्ति का वो छंद में देखें कि पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा, प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, तो कंचन पलंग कैसे मन को लुभाएगा, पति कंद मूल खाए और हम राजभोग, कंठ से निवाला कैसे भीतर समाएगा, पाप नहीं है ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा, नहीं नहीं अम्ब ये। और अंत में सुतकीर्ति से जो संदेश देना है एक आधा छंद उसके देखें कि स्नेह और आदर जहां हो एक दूसरे का, ऐसा घर तो सदैव स्वर्ग के समान है, माता जैसी सास और बेटी सी बहू हो, जहाँ घर नहीं है वो सुख संपत्ति की खान है, देव पितृ गुरु नित्य सेवित जहाँ पे दिव्य, सुर नर मुनि करें उसी का बखान है, और माता और पिता की जो चरण धूलि धारे शीश, उसके ही चरणों में झुकता जहान है।

0: आप एकाध छंद जो है वो उससे जटायु शतक से भी सुना दें, एकाध फुटकर चाहें तो सुना दें।
1: हाँ, एक दो छंद मैं आपको सुना देता हूँ जटायु शतक से। जटायु शतक मेरा अवधि का खंड काव्य है, तो अवधि में लिखा गया है, और उसके एक दो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। रावण को जब समझाता है, उसका एक छंद देखें
0: हाँ
1: कि आजू कह मम मानी दसानन, राम के संग न बैर बढ़ावा। जौनी जो वंश के क्षेम चाह, जिनी खोदी के सूतल सिंह जगावा। सौम्य कुलीन पुलस्त महारिषि, के कुल माजिनी दाग लगावा। जाहु चला घर छोड़ी सियाती, या चोरन माजिनी नाम लिखावा।
0: वाह वाह,
1: जो समझाए से नामन व्यापा, हता ब्या तुहु भल अवसर खोये। और जौरन माँ को पिहें रघुनायक, हे दस शीश चुके नहीं रोये। ब्रह्म रुद्र न राखी सकें, तो बने बस काल के गाल म सोए। जौन जे बोए वो काटे वो है, पहताने से चैत के गोहू न होए।
0: वाह वाह,
1: आपन जानी के नीके बदे, हम हूँ इतना समझावत बाटी। पैदा भया जमने कुल माँ कुछ, तव जोगवा वही कई परिपाटी। नाहक बैर बढ़ाई के मीत, उतान करा जिनी आपन खाटी। नाही ई रौंदे तो हैं वही से, जैसे रौंदे कुहार भिगोई के माटी।
0: वाह वाह,
1: भूल सुधार न हो ये कबो, जब आज कुपंथ पे पाम बढ़ऊ ब्या। बाटे बनी जितनी अब ले, कुल कई कुल तू मर जाद मिटऊ ब्या। फाटे करेज दही अनुमानी, जो चूना की मेटी में हाथ लगऊ ब्या। राम कबान जो छूटे कमान से, तो हेरे पर जूड़ी बयारी न पऊ ब्या।
0: शर्मा जी, आप कुल मिलाकर अपने साहित्य के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते?
1: देखिए, समाज के प्रति मेरा जो एक कवि का दायित्व है, समाज में हो रही बुराइयां हम कैसे उनको दूर करें, और कैसे करें कि यह समाज हमारा, एक रामराज्य की जो हमारी परिकल्पना है, वो पूर्ण हो, इसी भाव को लेकर के ये दोनों खंड काव्य लिखे गए। जटायु में भी हमने यही प्रयास किया कि नारी के सम्मान की जो रक्षा, जो दायित्व नारी के सम्मान के लिए उसने निभाया, जटायु ने,
0: जटायु ने भाई,
1: अगर आज का समाज उस दायित्व को निभाने लगे, तो ये संभव है कि हम रामराज की परिकल्पना पूरी कर सकते हैं। और जो ये हो रहा है आज, अनाचार, पापाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, इसे रोका जा सकता है, ये संभव है। लेकिन ये तब संभव है जब इसका प्रारंभ अपने घर से हम करें। यदि एक बहन किसी नारी का अपमान करने वाले अपने भाई को राखी बांधने से इनकार कर दे, यदि एक पिता ऐसे पुत्र को अपनी संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दे, यदि समाज ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दे, तो नारी के प्रति किया जा रहा अपमान न केवल रुकेगा, बल्कि इसका पनपना भी बंद हो जाएगा। जटायु शतक जब आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जटायु आज के पढ़े लिखे सभ्य समाज से एक प्रश्न करता है कि क्या उसकी सोच एक पक्षी से भी गई गुजरी हो गई है। जिस दिन समाज और परिवार जटायु की तरह ऐसे रावणों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसी दिन से नारी के सम्मान की रक्षा भी होगी, और रामराज्य की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।
0: धन्यवाद शर्मा जी, मैं ओंकार त्रिपाठी, आप सबको नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मेरा साहित्यिक सफर क्रम में अभी आप श्री जयराम शर्मा दिव्य से डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
3: 2 अगस्त 2026 को दिल्ली के पीरागढ़ी में आयोजित एक गरिमामय साहित्यिक समारोह में कवित्री माही मुंतजीर के द्वितीय काव्य संग्रह मासूमियत के लिबास और कवि ललित मोहन जोशी के प्रथम गजल संग्रह उदासी खा गई का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। पुस्तकों का लोकार्पण श्री रामकुमार भगत, श्रीमती ओमवती, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन, श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी, श्री संजय जैन एवं श्री कुमार राघव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर दोनों काव्य संग्रहों की समीक्षात्मक चर्चा की गई। वक्ताओं ने दोनों कृतियों की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए रचनाकारों की सृजनशीलता की सराहना की और उन्हें उज्जवल साहित्यिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित साहित्यकारों एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सर्वश्री अंजू अग्रवाल, उत्साही राजरानी भल्ला, उर्वी उदल, मधु, एकता चौहान, रजनी बाला, मयंक शर्मा, एडवोकेट प्रियंक शर्मा, वीरेंद्र राय, कुमार राघव, ईशा मालू, संदीप सोनी, मुरारी मंडल, साहिल सन्यासी, निखिल चौधरी, जितेंद्र जीत, सिद्धार्थ और नासिर सहित अनेक साहित्यकार, समाजसेवियों और प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह का संचालन संदीप सोनी।

0: ने किया। वहीं 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन गगोई वैश्य समाज द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस कवि सम्मेलन में सर्वश्री अंजना जैन, आशीष गुप्ता, नीलम नीलमणि, श्याम मोहन गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, मीनू द्वारा काव्य पाठ किया गया। वहीं 3 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित पावस गीत गोष्ठी साहित्य और संगीत की मधुर सुर लहरियों से सराबोर रही। विशुद्ध गीत केंद्रित आयोजन में देश के प्रतिष्ठित गीतकारों और कवियों ने वर्षा, प्रकृति, भारतीय संस्कृति तथा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अपने गीतों का भावपूर्ण एवं सस्वर पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन गीतकार श्री ओमकार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि गीत काव्य की अत्यंत सशक्त और अद्भुत विधा है, जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का सर्वाधिक सहज और प्रभावी रूप से दर्शन होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा पीढ़ी को गीत जैसी समृद्ध साहित्यिक विधा से जोड़ा जाए, ताकि इसकी गौरवशाली परंपरा बनी रहे। कार्यक्रम के सरस्वत अतिथि डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय छंद, गीत और दर्शन की महान परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारे गीतों में भारत भूमि की गंध, उसका एकात्मक बोध, उसकी विविध भाषाओं का सौंदर्य तथा छंद विधान की गरिमा अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए। शायर गीतकार श्री शिव कुमार बिलग्रामी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान साहित्य गीतों में लोक गीतों की आत्मा और लोक संवेदना को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कवित्री डॉक्टर शैलजा सिंह ने अपना लोकप्रिय सावन गीत का सहस्वर पाठ कर समूचे सभागार को सावन की मधुर अनुभूतियों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के संचालक श्री ओमकार त्रिपाठी ने कहा कि जब गद्य असमर्थ हो जाता है तब कविता जन्म लेती है, और जब कविता भी अपनी अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है तब गीत जन्म लेता है। गीत स्वयं रस है जो समाज पर रस वर्षा करता है। गोष्ठी में सर्वश्री डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, विनय विक्रम सिंह, मनकही, नेहा वेद, नीना सहर, पीयूष क्रांति, नरेंद्र मस्ताना, डॉक्टर ईश्वर सिंह, शोभा सचान, डीपी सिंह और डॉक्टर शैलजा सिंह सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने अपने गीतों का प्रभावशाली पाठ किया। प्रत्येक प्रस्तुति पर श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों और गीत रसिकों ने पूरे उत्साह के साथ गीतों का आनंद लिया। वहीं 5 अगस्त को मैजिक मैन मनचंदा फाउंडेशन के तत्वाधान में काव्य के रंग आराधना के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवि भूपेंद्र राघव, कवित्री अनुराधा पांडे, कवित्री डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने काव्य के रंग आराधना के संग में काव्य पाठ किया। इस कार्यक्रम का संचालन आराधना सिंह अनु ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सुर साहित्य परिषद और हिंदी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ओके मॉडल स्कूल के सहयोग से एक भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देशभक्ति, साहित्य और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगी श्री ओम कुमार पुंडीर ने की। आयोजन के आयोजक डॉक्टर रवि कुमार रहे। जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर निर्मल स्वागतकर्ता की भूमिका में रही। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन श्री संजय जैन ने किया। संयोजन का दायित्व सुश्री उर्वी उधल और निवेदक श्री नयन नीरज नायाब रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सर्व श्री अशोक भारद्वाज और जयसिंह आर्य उपस्थित रहे। वहीं कर्नल प्रवीण त्रिपाठी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शौर्य सम्मान से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित कवि और कवित्रियां अपनी ओजस्वी गीतात्मक और समकालीन रचनाओं का पाठ किया, जिनमें सर्व श्री डॉक्टर नाथूलाल लोटवाड़ा, सीमा रंगा, अनुराधा पांडे, अतिथि अस्थाना ईशा भारद्वाज, आरती वर्मा, मनोज डागर, रामेश्वर, योगेश कृष्ण, विभा राज, सुनील शर्मा, अंकुर मिश्रा, अंकुश पांडे, शीतल, रघुवर दास शर्मा और नवीन जोशी नवल प्रमुख रूप से शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि स्वतंत्रता के अमर मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक संस्कारों का उत्सव रहा। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों की उपस्थिति रही।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। श्रोताओं, चलते चलते आपको ये बताते चले कि साहित्य की कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार सुबह 8:45 पर किया जाता है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल एयर लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रतिमा युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, कुछ कहता है दिल। इस कार्यक्रम में 30 साल तक के सभी युवा जो किसी भी स्तर का

0: अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है akashvanihindiwarta@gmail.com। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
1: श्रोताओं, हमारे अतिथि क्रम में हमारी पिछली कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर दिविक रमेश से, तो आइए डॉक्टर दिविक रमेश से बातचीत का सिलसिला आज की इस कड़ी में भी जारी रहेगा।
2: तो आपको बाल साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
3: देखिए, ऐसा है कि पुरस्कार निश्चित रूप से किसी भी रचनाकार के लिए जो है एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो है कोई भी मुझसे छोटा जब मुझसे ये कहता है कि मुझे कुछ बताइए कुछ कहिए, तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूँ उनको कि आपकी रचनाशीलता बनी रहे।
2: क्या बात, वाह।
3: देखिए, बहुत सारी बाधाएं होती हैं,
2: बिल्कुल आती हैं।
3: कुछ उपलब्धि हो गई तो उसे रोक दिया, कुछ और चीज हो गई जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से तो रोक दिया, लेकिन रचनाशीलता बनी रहना बहुत जरूरी है,
2: बहुत बड़ी बात।
3: तो इसलिए जो है ये पुरस्कार आदि जो है ना आपको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुंठित कर दे, अवरोध पैदा कर दे तो फिर ये सोच लिया कि बस सोच लीजिए उस समय के जो आपका लेखन था उसको ये पुरस्कार मिल गया है, अब आपको आगे का लिखना है,
2: आगे क्या करना है, और एक नई जिम्मेदारी के साथ
3: लिखना है
2: जी, बिल्कुल।
3: तो ये चीज होती है। अब इसमें हुआ ये कि आप शायद जानती होंगी कम से कम हिंदी में, देखिए बंगला में, मराठी में, कुछ और भाषाओं में बाल साहित्य का एक बड़ा वर्चस्व रहा है, और कहा यह भी जाता है कि बड़े जो भी बड़ा लेखक है वो जब तक बाल साहित्य नहीं लिखता तब तक उसको अधूरा ही माना जाएगा।
2: जी।
3: हिंदी में ऐसा नहीं था, हालांकि हिंदी में लिखा गया पहले भी। आप संस्कृत या पाली के साहित्य की बात छोड़ दीजिए, पंचतंत्र या हितोपदेश या जातक कथाएं वगैरह, लेकिन हिंदी में जो बाल साहित्य लेखन है वो है तो सही, लेकिन उसको जितना प्रोत्साहन मिलना था, जितनी पहचान मिलनी थी, जितना सम्मान पुरस्कार मिलना था वो नहीं मिला। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उनमें बाल साहित्य को उस तरह से रेखांकित नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए, जबकि मैं ये मानता हूँ आज तारीख में भी कि बाल साहित्य भी साहित्य है और उतना ही महत्वपूर्ण है,
2: बिल्कुल,
3: जितना कि जिसको आप बड़ों का साहित्य कहते हैं। पहली बात तो यह कि मैं तो बाल साहित्य को सबका साहित्य मानता हूँ, ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों का होकर वो सबका है, सबको पढ़ना चाहिए,
2: बिल्कुल।
3: ये तो बाल साहित्य जो है उसकी ये जो स्थिति है, तो जैसे मैंने नाम लिया जयप्रकाश भारती जी, देवश्री जी आदि, उन्होंने तो पहला रिसर्च जो था PhD वो बाल साहित्य पे किया, मस्तराम कपूर ने किया और लोगों ने किया, लेकिन बाल साहित्य के प्रति जो है जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना नहीं था। तो हम लोग जो है इन सब के साथ मिलकर के यही सोचते थे कि भाई बाल साहित्य के प्रति भी पूरा ध्यान जाना चाहिए,
2: बिल्कुल।

0: उस प्रयत्न होते रहे, तो उस प्रयत्न में एक सफलता ये मिली कि साहित्य अकेडमी जैसी संस्था ने भी और साहित्यों के बड़ों के साहित्य के साथ बाल साहित्य को भी पुरस्कृत करना शुरू किया। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि ये जो पुरस्कार शुरू हुआ, तो पहले पुरस्कार की चयन समिति जो थी तीन व्यक्तियों की, उसमें एक मैं था।
1: अरे वाह।
0: तो और वहां पर जो है ना, हमने जो है चुना कि किसको दिया जाए
1: जी।
0: तो उसमें जो है फिर
1: चल पड़ा,
0: मेरा भी नंबर आ गया।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक लेखक के रूप में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये तो वही है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि मेरी रचना धर्मिता बनी रहे।
1: ये वाकई बहुत
0: सबसे बड़ी चुनौती ये होती है,
1: क्योंकि बड़ी बात है।
0: मेरे ऐसे समय आए हैं जब मुझे लगा कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। आपकी अपनी रचना आपके लिए चुनौती बन जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि आप लिख रहे हैं आपकी, और आपकी कोई अच्छी, जिसको आप अच्छी रचना मानती है, वो चुनौती बनी हुई कि आपने क्या लिख डाला, है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसलिए लेखक के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं। देखिए, कुछ व्यवहारिक चुनौतियां हैं, कुछ रचना प्रक्रिया संबंधित चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी तो रचना प्रक्रिया संबंधित चुनौतियां ही हैं कि आपकी अपनी रचनाशीलता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: और अभी देखिए, इस रूप में सोचिए कि रचनाकार के सामने दो स्पष्ट चुनौती होती है। एक तो ये कि जो उसने लिखा है वो जो अगला लेखन किया वो उससे आगे बढ़ा हुआ हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल एक, एक, सही बात, सही बात।
0: वो इतनी बड़ी चुनौती है कि उसको स्वीकार तो कर लीजिए, लेकिन उसको निभाना जो है वो बस हो जाए तो फिर क्या कहने।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर साहब। कोई ऐसी रचना आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: देखिए, मेरा एक काव्य नाटक है, खंड खंड अग्नि।
1: जी जी जी।
0: और वो लगभग 2 साल मैं सोचता रहा था, तब जाके लिखा गया
1: जी।
0: उसमें अध्ययन भी, अनुभव भी है, उसमें दृष्टि है, रिविजन भी है, सब कुछ है। वो काफी करीब है। वैसे तो कुछ ऐसा है कि मैं तो, चाहे वो बाल साहित्य हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे वो बाल नाटक हो, कोई भी हो, सब मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ही लिखने की कोशिश की है
1: जी।
0: और वो सभी मेरी प्रिय हैं। लेकिन अब मैं इसमें क्या कहूँ, कई दफे जो है लगता है कि रचना बहुत प्रिय है तो दूसरी रचना आकर के सामने खड़ी जाती है कि मैं क्यों नहीं हूँ।
1: तो एक बच्चा है, बच्चे होते हैं सारे, जैसे कि मैं क्यों नहीं।
0: तो मुझे कहना पड़ता है भाई तुम भी उतने प्रिय हो। तो अब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता इस मामले में
1: जी।
0: तो सारी प्रिय हैं।
1: तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी रचना को कई बार लिखकर भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिली हो, संतोष ना मिला हो, कुछ कभी ऐसा हुआ है?
0: ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो फिर मेरी किताबों में नहीं आई, वो रह गई वहाँ फाइलों में ही पड़ी है, छप के भी फाइलों में पड़ी है,
1: छपने के बाद भी।
0: हाँ, ऐसी रचनाएं तो है और कई ऐसी रचनाएं हैं जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। जैसे हमारी मेरी कविता है माँ, मेरी माँ संबंधी बहुत कविताएं हैं, तो माँ को लेकर के कविता है। और मेरे यहाँ पहाड़, समुद्र वगैरह ये सब आ जाते हैं, जब समुद्र नहीं देखा तब भी आ जाता था।
1: क्या बात। तो जरूर मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को कुछ जरूर सुनाएं।
0: जरूर सुनाऊंगा। अच्छा, आपको बताऊं कि मैं 1981 में शायद कश्मीर गया था
1: जी,
0: और वहाँ जो है जो मैं पहलगाम में गया
1: जी,
0: पहलगाम में वो
1: क्या
0: नदी है, लिद्दर नदी है,
1: लिद्दर नदी है।
0: ओहो, तो उस समय नया नया मेरा विवाह भी हो चुका था, तो वहाँ मैं गया था, छोटे बच्चे छोटे थे, बहुत आनंद आया
1: जी।
0: तब की कविता है वो
1: जी, बिल्कुल सुनाइए।
0: देखिए, और कविता कहाँ है, पहलगाम।
1: पहलगाम,
0: आप इस संदर्भ में काजल एक विशेष बात बताऊं, ये कविता सोचिए कि 1981 की लिखी हुई है, और मेरा तीसरा जो संग्रह हल्दी चावल और अन्य कविता है 1992 आया था, उसमें ये संकलित भी हुई
1: जी,
0: बाद में
1: जी।
0: अभी कुछ हाल ही में एक दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक कविता हमने कभी पढ़ी थी, कहाँ है पहलगाम, उसको दीजिए। तो मैंने कहा अरे भाई, इतनी पुरानी कविता का आप क्या करेंगे? नहीं, वो कविता अब तक गूंज रही है, हम अपने पत्रिका में विशेष रूप छापेंगे, छापेगी, उस पर लोगों ने टिप्पणी भी की। अब ये कविता कैसी है मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा, सुन लीजिए।
1: जी, जरूर जरूर।

0: इसका शीर्षक कहाँ है? पहलगाम। पूछिए मत, पूरी शैतान की नानी थी लिद्दर नदी। बर्लिन में मिली जिप्सी लड़की सी अल्लड़, पूरी की पूरी उतर गई थी मुझ में, आकाश से उतर मेरी धरती पर।
1: क्या बात सर, क्या बात।
0: पांव डालते ही पानी में काट ली थी एक ठुठुरती चिकोटी शैतान ने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब।
0: आओ यहाँ भी, यहाँ बैठो मेरे पास इस पत्थर के वक्ष पर और डाल दो पांव पानी में।
1: वाह बहुत खूब,
0: नदी ने कहा।
1: बिल्कुल सर।
0: हर आते जाते को नोती थी बिना भेदभाव के लिद्दर नदी पहलगाम की। ठिठुरते पानी में टिके पत्थर की नमी में भी कितनी तपिश थी।
1: वाह,
0: किसी अपने के सामने जी खोल देने की तरह।
1: क्या बात, क्या बात, वाह।
0: कहीं कोई नहीं था वहां अकेला, पूरे ब्रह्मांड में हमारे होने का एक विराट उत्सव फूटने लगा था हम में चश्मों सा।
1: वाह,
0: हदी हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक। हदी हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक, और तुम कितना लजा गई थी।
1: क्या बात, वाह।
0: याद है ना वह गर्मी जो फूट गई थी हमारे पाँव के असावधान स्पर्श से।
1: क्या बात, वाह, बहुत खूब, बहुत
0: अपनी पत्नी के साथ था।
1: बिल्कुल, बहुत खूब।
0: पूस की रात में हमें मिल गई थी अलाव की आंच से, बात यूं कितनी छोटी है, मामूली भी, खरगोश के फुदक कर ओट में हो जाने से।
1: क्या बात, वाह।
0: पर सवाल होते ही कितनी तीखी हो जाती है, हम क्या उत्तर देंगे अगर कोई पूछ ले कहाँ चलेंगे इन छुट्टियों में, पहलगाम।
1: क्या बात सर, आप तो मुझे कश्मीर ले गए, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो आप मुझे वही ले गए। बहुत खूबसूरत, पूरा लिद्दर और पहलगाम आंखों के सामने आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर।
0: मैं एक कविता आपके सामने और।
1: जी जी सर।
0: माँ गाँव में, इस शीर्षक से मेरा संग्रह भी है।
1: जी, माँ गाँव में।
0: माँ गाँव में है, और इसके लिए चयन किया था डॉक्टर नामवर सिंह जी ने।
1: अरे वाह,
0: कविताओं का।
1: जी,
0: गाँव मुझसे छूटता नहीं है कभी भी।
1: नहीं सर, बिल्कुल छूटता ही नहीं है।
0: शहरी हो चुका हूँ,
1: गाँव हमेशा रूह में रहता है।
0: आप देखिए
1: जी,
0: मैं शुरू में बताया ना, मैं तो बहुत बचपन में माँ से अलग। माँ गाँव में है, चाहता था आप से माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में।
1: क्या बात, माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में।
0: चाहता था आप से माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गाँव भी थोड़ा साथ में, जो न शहर को मंजूर था न मुझे ही, ना आ सका गाँव ना आ सकी माँ ही शहर में। और गाँव में क्या करता जाकर, पर देखता हूँ कुछ गाँव तो आज भी जरूर है देह के किसी भीतरी भाग में।
1: क्या बात, क्या बात।
0: इधर उधर छिटका थोड़ा थोड़ा चिपका, माँ आती बिना की ये घोषणा तो थोड़ा बहुत ही सही, गांव तो आता ही ना शहर में।
1: क्या बात,
0: पर कैसे आता वह खुला खुला दालान आंगन, जहां बैठ चारपाई पर माँ बतियाती है, भीत के उस पार खड़ी चाची से बहुओं से।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
0: करवाती है मालिश पड़ोस की रामवती से, सुस्ता लेती है जहां धूप का सबसे खूबसूरत रूप ओढ़कर किसी लोक गीत की ओट में।
1: वाह,
0: आने को तो कहां आ पाती है वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद है खेत पैर कुएं और धाने।
1: बहुत खूबसूरत।
0: पैर वो जगह कही जाती है हमारी तरफ, जहाँ फसलें काट करके
1: जी
0: डाली जाती
1: रखी जाती हैं,
0: फिर उस पर बैल वगैरह चल करके उसमें से अनाज अलग करते थे।
1: जी,
0: आने को तो कहां आ पाती है वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद हैं खेत पैर कुएं और धाने, बावजूद कट जाने के कॉलोनियां खड़ी है जो कतार में अगले चुनाव के नियमित होने को, और वे तमाम पेड़ भी जिनके पास आज भी इतिहास है अपनी छायाओं के।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, जब आप लिख नहीं रहे होते हैं तब आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं उस वक्त?
0: देखिए, मैं एक सहयोग से ऐसा है कि मैं अध्यापक रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, और लेखक के साथ भी होता है कि वो लिखता है तो लिखने वाले पुस्तकें भी देते हैं।
1: जी,
0: तो पढ़ना और लिखना ये साथ साथ ही चलता है।
1: बहुत खूब।
0: तो मैं पढ़ता हूँ और घर परिवार भी प्यारा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर मैं लिखने की मेज पे हूँ और मुझे पता है कि ये नहीं लिखा गया तो फिर नहीं लिखा जाएगा,
1: होता है ऐसा,
0: लेकिन उस लेकिन

0: उसी समय अगर मेरी पत्नी को या मेरी बहुत अंतरंग किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं लिखना छोड़ के पहले उसकी जरूरत को पूरा करूंगा।
1: वाह, कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने।
0: तो मैंने उसमें से निकाला कि जिस मानवता, जिस मनुष्यता के लिए हम लिखते हैं
1: जी,
0: वो मनुष्यता पुकार रही हो उसको छोड़ के फिर आप लिखे तो ये कौन सी बड़ी बात हुई।
1: बिल्कुल। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे बड़ी बात यह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए साहित्य वो स्थान है, और साहित्य सिर्फ मेरा लिखा नहीं, हिंदी का नहीं, किसी भी भाषा का, पूरे विश्व का जो साहित्य है, जो श्रेष्ठ साहित्य है, वो जगह है जहाँ पर मनुष्यता आज भी संरक्षित है। सारी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं मनुष्य के लिए होती हैं, लेकिन मनुष्यता के लिए, मनुष्य की संवेदनशीलता को जगाए रखने के लिए, मनुष्य को मनुष्य होने के लिए जो सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ी जगह है वो साहित्य होता है। इसलिए साहित्य के करीब आइए, साहित्य को अपनाइए।
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने डॉक्टर साहब। और आप हमारे स्टूडियोज में आए, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए और अपने आपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे अतिथि क्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

چه خوش بالا ما شدی زین طرح خوش رنگ.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمائید به تازه ترین خبر های جهان.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

166.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:10 और 15 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम ग्रह लक्ष्मी।

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम को सुनने वाली सभी बहनों को हमारा
1: राम राम, राम। और साथ ही नमस्कार।
0: बिल्कुल नमस्कार भी करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं सखियों के साथ साथ अगर सखा भी बैठे हैं और कमलेश वो सुन रहे हैं तो उन भाइयों को भी हमारा राम राम। घर के जितने सदस्य बैठे हैं हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी को हमारा राम राम, राम।
1: और जब हम राम राम करते हैं आते ही और उसके स्वरूप हमें देखो आशीर्वाद भी तो मिलता है, क्योंकि जब हम झुककर किसी को एक अभिवादन करते हैं तो उसकी आत्मा से आवाज तो निकलती है कि भाई खुश रहो। तो हमारे स्टूडियो तक हमें आवाज आ गई है कि आप सभी हमें यही कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करने आते रहो, हमसे बातें करते रहो, कुछ अपनी कहते रहो, कुछ जग में जो हो रहा है उसके हमें बताते रहो।
0: तो जग की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, वो इस समय सावन का मौसम चल रहा है तो जो हमारा हरियाला सावन है वो आ चुका है, दस्तक दे चुका है, हर तरफ पानी पानी है, देखो तो झमाझम बारिश हो रही है। और ऐसे में खास करके जो हमारे तीज त्यौहार होते हैं वो सावन मास में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
1: कहते तो हैं जब अब तीज आ जाएगी तो फिर बोलते हैं आई तीज बखेर गई बीज, यानी उसके बाद तो झड़ी लग जाएगी हमारे त्योहारों की। और जब आपने बात की सावन की, अब देखो ना सावन में आपने भी हरी हरी चूड़ियां पहनी है और ये देखो मेरी भी और
0: कपड़े भी हरे हरे।
1: हाँ वही मैं कह रही थी कि हरा हमने सूट पहना है, मतलब अगर प्रकृति अपने आप को हरे रंग में रंग रही है तो हम क्यों पीछे रहे हम ना,
0: प्रकृति ही तो हमें विवश करती है भाई आप भी हरे हरे हो जाओ क्योंकि हम हरे रंग में आ चुके हैं, रम चुके हैं। तो देखा जाए तो ये जो हरियाला मौसम होता है सावन बहुत ही मनोरम होता है, मन को बड़ा आनंदित करता है और खास करके अगर देखा जाए तो रिश्तों को भी बहुत ही मिठास से आगे बढ़ाता है।
1: बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है वो मिठास में बंधे रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें।
0: बिल्कुल, और हरियाले सावन का कैसे आनंद हम उठाएं, चलिए आपको हरियाले सावन की तरफ चलते हैं, कैसे गीत संगीत के जरिए आपका आनंद करवाते हैं
1: और हम भी शामिल होते हैं इसमें।

0: और जब हम अपने वार त्योहार की बात करते हैं, आते ही अपने बहनों से बात करते हैं, तो हमारा प्रयास ये भी रहता है कि आज के दिन जो विशेष बात आज के दिन हुई है उसके बारे में भी हम अपनी बहनों से चर्चा कर लें, उनको बताएं, और साथ साथ जो हमारे जो छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं उनका इससे जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगा, क्यों यमुना?
1: बिल्कुल सही कह रही हो कमलेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि देशभक्ति की बात जब आती है, देश के शहीदों के बारे में जब हम बात करते हैं, उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में बात करते हैं, तो सच में तो मन जो है एकदम से अधीर हो जाता है कि उन्होंने कैसे अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आज़ाद कराए। तो
0: बिल्कुल
1: आज जब बात हो रही है काकोरी कांड की, क्योंकि आज 9 अगस्त है और खास है काकोरी कांड।
0: तो आज काकोरी ट्रेन एक्शन की जो है वो वर्षगांठ है। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था वो लूटने के लिए उन्हें शाहपुर से जो है लखनऊ जाने वाली 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को काकोरी के पास रोका था, इसीलिए इसका नाम पड़ा काकोरी ट्रेन।
1: और सच कहें तो काकोरी कांड हुआ क्यों, इसका जानना भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। धन जुटाने की बात आई, क्योंकि क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की बात, संघर्ष चलाने के लिए पैसों और हथियारों की सख्त ज़रूरत थी। तो ऐसे में देखा जाए तो क्रांतिकारियों का मानना था कि यह सारा पैसा भारतीयों से टैक्स के रूप में वसूला गया और अंग्रेजों का सरकारी खजाना है, इसलिए इस पर भारत के लोगों का ही हक है। और सच कहें तो जो शक्ति प्रदर्शन की बात आई थी, इस साहसी कदम के जरिए वे ब्रिटिश प्रशासन को यह जताना चाहते थे कि भारतीय जनता अब दमनकारी शासन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है।
0: और जो अपनी एकता है उसके बारे में भी उनको बताना था कि अब हम एकजुट हो चुके हैं और आप जितना हम पर प्रयास करेंगे हमें नीचे दिखाने का, नीचा दिखाने का, या हम पर जितने जुल्म करेंगे उतना ही हम और आगे बढ़ते जाएंगे।
1: और सच कहें तो इस पूरी योजना के मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड थे, कहा जाए तो उनको जो एक उन्होंने पूरा काम किया वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। उनके साथ इस मिशन में प्रमुख क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन

0: सिंह और उनके अन्य साथी भी शामिल थे।
1: बिल्कुल। और इसके बाद ये कांड होने के बाद कम से कम 40 क्रांतिकारियों को उस समय पर गिरफ्तार किया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो देखो जो देश प्रेम की भावना है वो तो और भी ज्वाला की तरह से भड़क उठी।
0: बिल्कुल। और सही कहा जाए तो क्रांतिकारियों ने वो कर दिखाया जो लोग नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात है, इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने भारी तलाशी अभियान चलाया और दर्जनों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। और बाद में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई। तो देखा जाए तो नमन है, श्रद्धा सुमन अर्पित है ऐसे वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें आज आज़ाद किए और आज हम स्वतंत्र आबोहवा में जी रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: अपने गांव का खाना, अपने गांव का रहन-सहन किसको अच्छा नहीं लगता?
1: सभी को अच्छा लगता है, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो।
0: बिल्कुल। और जब अगर उसी चीज को हम एक अवसर बना ले, आय का अवसर बना ले, तो यमुना इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल, आपका इशारा क्या है मैं समझ रही हूँ, बहुत कुछ विस्तार में बताना चाह रही हो, लेकिन खुद नहीं, क्योंकि हमारे साथ इसमें जो प्रगतिशील किसान हैं उनसे बात होगी, तो प्रगतिशील किसान जो है क्या बताएंगे, तो चलते हैं सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
0: और ये बातचीत है ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर। प्रगतिशील किसान है हमारे साथ हर्षवर्धन त्यागी, और उनसे बात कर रहे हैं कमल किशोर। बहने भी सुने ये बातचीत।
2: हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है और यहाँ की लोक संस्कृति, परंपराएं, प्राकृतिक सौंदर्य और ग्रामीण जो रहन सहन है देश विदेश के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करता है। ग्रामीण पर्यटन ना केवल गांव की पहचान को एक नई ऊंचाई देता है बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार और आत्मनिर्भरता के भी अवसर पैदा करता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा किसान हर्षवर्धन त्यागी जी। हम आपका स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जी, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: हर्षवर्धन जी, ये ग्रामीण पर्यटन, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
3: पहले तो मैं सर ये कहना चाहूंगा, हम सभी जानते हैं हमारा देश गांव का देश है और इस देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव से जुड़ने का अर्थ है अपनी आत्मा से जुड़ना
2: जी,
3: जो कि ना केवल हमें सुकून देगा, हमें सच्ची खुशी है वो प्रदान करता है। आज

0: शहर में भागती दौड़ती जिंदगी से जैसे धीरे धीरे लोग उबते जा रहे हैं, तो देखने में आया कि बीते 5 से 10 वर्षों में काफी शहरी लोगों का जो रुझान है वो गांव की तरफ बढ़ा है। और जहां बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। पर बीते कुछ वर्षों में, मैं खुद स्वयं कृषि से जुड़ा हुआ हूँ, खेती के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण पर्यटन ने एक महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया है।
1: जी
0: शहर के लोग अब जो है पर्यटन की दृष्टि से पहले केवल पहाड़ों पर जाया करते थे। पहाड़ों पर जाने का उद्देश्य यही था कि वो एक भागती दौड़ती जिंदगी से दूर हटकर शांति प्रिय जगहों पर जाना चाहते हैं। जो हमारे आसपास के गांव हैं उसमें संसाधनों के अभाव थे। शहरी व्यक्तियों को कुछ संसाधन चाहिए जो उन्हें पहाड़ों पर मिलते थे लेकिन गांव में नहीं मिल पाते थे। बट बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने किसानों को इस दृष्टि में सहयोग करना शुरू किया कि वो ग्रामीण पर्यटन को अपनी रोजगार का एक माध्यम बनाए। और उस दिशा में काम करते हुए कुछ किसान आगे आए, उन्होंने अपने गाँव में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया। और देखने में ये आ रहा है कि अब उस ग्रामीण पर्यटन की जो विचारधारा थी उसको शहर के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और वो अब गाँव की तरफ जा रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से। वो गाँव में समय व्यतीत करते हैं, किसानों से मिलते हैं, खेती को भी देखते हैं कि किस प्रकार उनका भोजन जो है किसान उत्पादन कर रहा है उसका। हम स्वयं ग्रामीण पर्यटन में काम करते हुए शहरों से जो लोग हैं उनको सहूलियतें देते हैं अपने गांव में कि वो आए, रुके, ठहरे और वहाँ की जो सुंदरता है, जैसे हमारा गांव जो है वो गंगा के बहुत नज़दीक है
1: जी
0: तो माँ गंगा का जो है वो दर्शन भी करते हैं। हमारा जो क्षेत्र है वो बागवानी का क्षेत्र है तो वो बागवानी का आनंद लेते हैं, किस प्रकार जो है वहाँ फल लग रहे हैं, सब्जियों की खेती हो रही है, वो सब देखते हैं।
1: जी
0: उससे जो है काफी किसानों को सहयोग मिल रहा है, उनकी आर्थिक रूप से मजबूती हो रही है।
1: जी जैसे कि अभी आपने कहा कि भारत सरकार भी इस दिशा में बहुत कुछ प्रयास कर रही है, और समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है मन की बात कार्यक्रम है, उसमें भी पर्यटन का जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि, और हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गाँवों का देश है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि लोग जो गाँव वाले हैं वो थोड़ा सा शहर की ओर आना चाहते हैं, लेकिन जब शहर में आकर के देखते हैं कि यहाँ की जो जिंदगी है वो आबोहवा लगभग लगभग जैसे कि प्रदूषण कह सकते हैं हम, जो आबोहवा वो बदल चुकी है, तो लोग फिर एक बार फिर शहर से गांव की ओर रुख करना शुरू किए हैं, खेती बाड़ी देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की आवश्यकता आप महसूस करते हैं?
0: देखिए, मैं ऐसे क्षेत्र में ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और जैसा कि मैं बता रहा हूँ हम FPO के माध्यम से अपने किसानों को जोड़कर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हमारे जो FPO के उत्पाद है वो बेचने हम शहर आते हैं तो शहर के लोगों से हम मिलते हैं। हमें ये देखने में आया है कि वो लोग जो है बहुत ज्यादा अब थक चुके हैं शहरी जिंदगी से, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहर में जो है वो वातावरण अब उन्हें नहीं मिलता जो उन्हें सुकून दे सके।
1: जी
0: तो हमने अपने गांव में, अपने जो क्षेत्र है उसमें हमारे FPO के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के लिए एक मॉडल फार्म विकसित किया, जिसमें हमने जो है उन्हीं शहर के जो हमारे कस्टमर थे, जो हमारे ग्राहक थे, जो हमारे उत्पादों को खरीदते थे, वो हमारे साथ जुड़े, तो हमने उनको ये ऑप्शन दिया कि आप हमारे गांव में आओ, रुको, देखो क्या है और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। तो हमने देखने में आया कि बीते 3-4 वर्षों में हर साल जो लोग थे जो हमारे गांव में आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं।
1: जी
0: एक होता है ना माउथ पब्लिसिटी होती है, जो लोग आते हैं वो वहां पर आकर जो है उस वातावरण को महसूस करते हैं, आनंद लेते हैं, उसकी फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनके जानकार उनके मित्र जो है उसको देखकर आकर्षित होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं, ऐसे करते करते एक परिवार बढ़ता जा रहा है।
1: यानी कि चेन बना हुआ
0: जी
1: है। हर्षवर्धन जी, ये आपने कहा कि जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो आबोहवा है उससे महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम इसमें सिर्फ आबोहवा, वातावरण, प्रदूषण, इन सब से परेशान होकर के गांव की ओर जाते हैं, हम सिर्फ यही कह सकते हैं या कुछ और भी बात है? जैसे अभी आपने एक बात कही, जो उत्पाद होते हैं वहां के, जैसे जो खासकर जो हस्तशिल्प, जो कलाएं होती हैं, गांव से लेकर के आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनको एक अलग अनुभव होता है, क्या कहना चाहेंगे आप?
0: ना केवल उत्पाद, मैं एक और तरफ आपकी दृष्टि लेके जाना चाहूंगा। गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम पुराने समय से चले आ रहे हैं।
1: जी
0: हर गांव की एक अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था है और अपना एक माहौल होता है गांव का, जिसको वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, त्योहार मनाए जाते हैं, लोग जो है उन त्योहारों के साथ भी जुड़ते हैं। तो ना केवल ये है कि वो सुकून चाहते हैं, सुकून के साथ साथ एक आनंदमय वातावरण वो वहां देखते हैं, जीवन शैली वहां देखते हैं, उसको भी वो वहां इंजॉय करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है,
1: बिल्कुल,
0: भाषाओं की विविधताएं हैं, कल्चर की विविधता है, भोजन की विविधताएं हैं, उन सबको अब धीरे धीरे शहर के लोग जो है एंजॉय करने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल शहर की भागदौड़ से दुखी होकर उधर जा रहे हैं, जो गांव के अपना कल्चर है, जो गांव का अपना एक इकोसिस्टम है, वो भी उनको आकर्षित कर रहा है। तो वहां की अलग अलग तरह की कलाएं जो है उनसे रूबरू होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सांस्कृतिक रूप से हमारे यहाँ पे जो है रागनियां पुराने समय से होती थी, उसका आनंद केवल गांव के लोग लेते थे, अब हम देखने में आ रहा है कि रागनी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें शहर के लोग भी आते हैं।
1: शोर शराबा नहीं है जो

0: हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जितने भी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं गांव में, उसमें ज्यादा शोर शराबा नहीं है, उसमें परंपराएं भी शामिल हैं, लोक गाथाएं शामिल हैं। एक चीज और देखने को मिला है कि गांव में है उसमें सामूहिकता है, उसमें अकेलापन नहीं है गांव में।
1: मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा
0: जी।
1: हम सब शहरों में जो है कॉन्क्रीट की बनी बिल्डिंगों में रहते हैं
0: जी।
1: अभी गर्मी का समय चल रहा है, गांव में आज भी कच्चे घर बने हुए हैं, वो मिट्टी से लिपाई किए हुए हैं, गोबर की लिपाई किए हुए घर हैं। उनमें शहर के लोगों ने अपना अनुभव बताया, उन्होंने देखा कि शहर में जो हम कॉन्क्रीट में रहते हैं, जब हम उससे अलग हटकर गांव में आते हैं जहां एसी नहीं मिलता आपको, लेकिन फिर भी उस मिट्टी के कच्चे घर में जब आप रहते हैं तो आपको वो गर्मी, वो समस्याएं नहीं महसूस होती जो शहर में हो रही हैं। यहां बगैर एसी के शहर में नहीं रह सकते, लेकिन गांव में आज भी आप जो है इतनी भीषण गर्मी में भी बिना एसी बिना पंखों के भी जीवन काट सकते हैं। ये भी कुछ लोगों को बड़ा चकित करता, तो उन सब चीजों को समझ पा रहे हैं अब शहर के जो आजकल के युवा हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को साइंटिफिक रूप से देखते हैं, तो साइंटिफिक रूप से भी वो आजकल समझ पा रहे हैं कि मिट्टी से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, वो उनकी सेहत के लिए भी कितना फायदेमंद है। तो मैंने ये कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मुझे हमारे साथ जो जुड़े हुए उपभोक्ता हैं जो आके हमारे फार्म पर आते हैं, रुकते हैं, वो बताते हैं, तो उनसे मुझे समझ में आया कि अब लोग उस दृष्टि से भी समझ पा रहे हैं कि सेहत के नजरिए से भी हमें जो है गांव के साथ जुड़ना चाहिए, उस आबोहवा का आनंद लेना चाहिए।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं, सभी जानते हैं कि हर मामले में गांव का जीवन जो है वो बड़ा आनंददायक होता है।
1: इसमें मैं एक और चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा, बीते कुछ वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ जो है लोगों का रुझान इसलिए भी बढ़ा है कि हमारा जो तरह तरह के जो हमारे कल्चर्स हैं उनको स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री
0: जी,
1: वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहां के स्टेट में जो वहां की लोकल गांव देहात का जो कल्चर है वो उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करते हैं, तो लोगों को भी जानकारी मिलती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है, देश विदेश से लोग तक आते हैं भारत में इस प्रकार का कल्चर है, वो उसको देखने के लिए गांव तक जुड़ते
0: जी।
1: तो
0: जी,
1: ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में भी जो पर्यटन है, गांव का जो पर्यटन है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्या कहना चाहिए?
1: निश्चित तौर पर सर, आज के समय में अब मैंने जैसे बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवल कृषि पर आधारित नहीं है, कृषि के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग में भी धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को जो है सशक्त किया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि वो रोजगार के जो अपने जरिए हैं वो गांव में बनाए और अपने उत्पादों को प्रसंस्कृत कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए ग्रामीण पर्यटन की तरफ भी काम करें, छोटे छोटे समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण पर्यटन को जो है धीरे धीरे विकसित कर रहे हैं अपने गांवों में, गांव के नजदीक में जो छोटे छोटे मेले लगते हैं, मेले आयोजित होते हैं, उनको भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है जिसमें शहर के लोग अपनी भागीदारी करते हैं, वो उस तरह से भी जुड़ते हैं गांव से।
0: हर्षवर्धन जी, क्या आप मानते हैं कि ये जो ग्रामीण पर्यटन है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी बड़ी होती है?
1: इस देश में महिलाओं की भागीदारी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और गांव में तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गांव में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, चाहे वो काम खेत का हो, चाहे वो खेत के अलावा घर का हो। और अब जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यवसायीकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें आगे बढ़ रहे हैं हमारे किसान भाई, उसमें महिलाएं पूर्ण रूप से, बल्कि मैं तो कहूंगा शायद उनसे आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जिसमें लोकल स्तर पर कढ़ाई बुनाई सिलाई छोटे छोटे उत्पादों को तैयार करने की बात हो, उसके अलावा जो गांव में आपने जो देखा होगा कि जो तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, महिलाएं पुराने समय से ही उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जो है भागीदारी देती है,
0: बढ़ चढ़ कर भाग लेती
1: है, तो वो सब चीजें जो है आकर्षण का केंद्र बनती है। और जो शहरों के लोग जब गांव में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ केवल जो है हम जिसकी बात करते हैं कि महिलाओं को भारत में जो है वो दर्जा नहीं दिया था, ऐसा नहीं है, गांव में पुराने समय से ही महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी और अब और ज्यादा बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, क्योंकि अब सरकार जो है महिलाओं को और ज्यादा अवसर दे रही है
0: जी
1: आगे आने का।
0: जी हर्षवर्धन जी, आजकल देखते हैं कि जो हमारे जो युवा हैं, आप भी एक युवा हैं, और अक्सर देखा जाता है कि युवाओं को शहर बड़ा आकर्षित करता है, और आकर्षित करने का एक रीजन ये भी है कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, और दूसरा ये है कि रोजगार के जो साधन है वो लगता है कि गांव में कम है, तो इसमें युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है?
1: देखिए, एक समय था गांव से युवा जो है पलायन कर रहे थे शहरों की तरफ
0: जी,
1: क्योंकि उनको रोजगार के अवसर नहीं थे, संसाधनों के अभाव थे गांव में, लेकिन देखने में आ रहा है कि बीते 10 वर्षों में काफी भारत में जो है अर्थव्यवस्था पर काम किया गया सरकारों द्वारा
0: जी,
1: तो अब किसानों के जो बच्चे हैं उनके पास अवसर है कि वो खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रियां अपने गांव में ही स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, युवाओं के पास बहुत अवसर गांव में खुद आ रहे हैं, ग्रामीण पर्यटन भी उनमें से एक अवसर है, युवा जो है है सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अपने गांव में जो है अगर कोई इकाई स्थापित करते हैं तो उसको फिर आप क्योंकि पढ़े लिखे युवा हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। शहरों के लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए हम शहरों के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और देखने में आता है कि इसका काफी अच्छा रिजल्ट

0: धरातल पर मिल रहा है। अब जो पलायन था युवाओं का, जो पहले गांव से शहर की तरफ जाते थे, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब उल्टा देखने में आ रहा है कि शहर के लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर ग्रामों में जो है व्यवसायीकरण स्थापित कर रहे हैं।
1: यानी कि यह है कि युवा जो है बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे एक साथ चलें, अगर वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो खासियत है, उनको भी सभी युवा मिलकर के एक साथ लाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है गांव जाना नहीं चाहते हैं, गांव पर्यटन की ओर नहीं जाना चाहते, पर्यटन के लिए नहीं जाना चाहते। उसके उनके पीछे एक रीजन होता है कि नहीं नहीं वहां तो सुविधाएं नहीं है, अब नहीं जाना है। इस प्रकार कई प्रकार की धारणाएं होती हैं, तो इसमें और क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं और इनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, जो मूल समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी शुरू में, वो थी सबसे पहले ऊर्जा की, बिजली की। आज के समय में सोलर के माध्यम से हर गांव तक बिजली का पहुंच हो चुकी है,
1: जी।
0: सरकारें भी इस पर काम कर रही हैं। उसके अलावा दूसरी समस्या आती है, जैसे आपने बताया, रोड ट्रांसपोर्टेशन की,
1: जी, आवागमन की, जो
0: गांवों तक पहुंच बहुत कम हो गई है बाहर के लोगों की। अब सरकारों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि हर गांव से शहर तक जाने वाली सड़क को
1: जोड़ा जा रहा है, जी।
0: अब वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या भी नहीं रही। तीसरी समस्या जो आपने बताई खान पान की, तो मैं आपको बताऊं, शहरी खान पान से गांव का खान पान पुराने समय से ही बहुत बेहतर था,
1: जी,
0: शुद्ध था, देसी बेशक हो सकता है, जिसको आप देसी कह सकते हैं,
1: जी हाँ।
0: लेकिन वो उसका एक अपना ही स्वाद और अपना ही एक महत्व है, जो कि अब शहर के लोग समझ रहे हैं। शहर के जो भोजन आज के समय में खा रहे हैं, जिसका उनको सोर्स ही नहीं पता, उन्हें पता नहीं, लेकिन वहीं जब वो उल्टा गांव में जाते हैं, तो वो सामने आपके खेत से तैयार होकर आने वाली चीज आपके सामने तैयार की जा रही है, तुरंत आपको जो है परोसी जा रही है,
1: जी।
0: तो उस तरफ जो है ये चीजों की अवेयरनेस अब बढ़ गई है। अब लोग समझ गए हैं कि गांव का भोजन है वही एक्चुअल में भोजन है,
1: जी।
0: उससे ज्यादा शुद्ध भोजन उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ समय पूर्व मैंने आग्रह किया था आकाशवाणी की टीम से कि वो हमारे गांव के पास आए, वहां जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है कि माँ गंगा के आसपास के घाटों को विकसित करें, तो उसमें आकाशवाणी की टीम ने बहुत बड़ा सहयोग किया, उसको प्रसारित करने के लिए प्रसारण उसका किया, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, पूरे देश तक उसकी जानकारी पहुंची।
1: जी हर्षवर्धन जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे युवाओं को भी आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। हर्षवर्धन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ग्रामीण पर्यटन से आय के अवसर, मतलब इसके जरिए कैसे आप आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे प्रगतिशील किसान हर्षवर्धन त्यागी और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर। और जब गांव कोई आता है तो सच में वहां की मनोरम वादियों को अपने दिल में समेट के जाता है ना कमलेश?
3: बिल्कुल, और जिनके घर आता है उनका मन मयूर भी कुछ इस तरह से नाच और झूम उठता है।

0: और यमुना, जब सावन आता है तो एक चीज तो बड़ी गलत हो जाती है, और वो है कि भूख जो है वो हमारी कम हो जाती है, और कई बार इतनी भूख लगती है कि भैया कुछ भी सामने आ जाए तो ये भी खा लें और वो भी खा लें। अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे जब बात करो तो कहेंगे भाई कुछ बढ़िया सा बना के ले आओ। अब बढ़िया सा जो कुछ बनाया तो फिर कहेंगे अरे हमारे तो गैस बन गई, कुछ अपच सा लग रहा है, अब हमने सुबह खा लिया तो अभी शाम की तो हमारी इच्छा है नहीं। तो ये तो मैं यही कहूंगी कि भाई बारिश में जो है अपने खान पान पर तो हमारी बहनों को बहुत ही ध्यान रखना होगा, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी उनको सोचना होगा कि उनके जो टिफिन है उसमें वो क्या ऐसा दें जो जल्दी खराब ना हो, और उसमें जो है वो बैक्टीरिया और कीटाणु जो है वो वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इस समय जो है नमी बढ़ती है हवा में, और नमी बढ़ेगी तो बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि जो हमने खाना खाया है वो जो है वो हमने खराब खा लिया है।
1: ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। सच बात यह है कि अगर हम खाने की बात करें बरसात के मौसम में, तो पहली बात बाहर की जो चीज़ें होती हैं उससे कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात और है, जो बंद पैकेट के जो खाने होते हैं उससे भी परहेज करना चाहिए। उसमें
0: बिल्कुल
1: कब क्या उसमें सील लगी है, क्या है उसमें फफूंदी लगी है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे सावन में
0: साग
1: साग और भादों में
0: दही।
1: दही नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए कढ़ी
0: बिल्कुल
1: भी नहीं बनती है, रोक लग जाती है। तो जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो कही है ना वो अनुभव के आधार पर उन्होंने कही कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं और समय के अनुसार प्रकृति के साथ तालमेल बना के अगर हम चलते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ नजर आएंगे, और जो हरी भरी वादियां हैं ना उसका आनंद उठाएंगे, जैसे सावन का आनंद उठाएंगे।
0: बिल्कुल उठाते हैं। और जब हम बात करते हैं कि इस समय क्या खाएं, तो देखो बासी भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। और ये भी बहनें कई बार कर लेती कि अरे सुबह इतनी रोटियां बन गई थी, इतनी सब्जियां बन गई थी, कोई बात नहीं उनको शाम को जो है मैं खिला दूंगी। भाई ऐसा ना करें, क्योंकि आपका जो थोड़ा सा ये सोच है वो हो सकता है कि किसी बच्चे का पेट खराब कर दे या किसी को और कुछ परेशानी हो जाए। तो उतना ही खाना बनाओ जितना कि ज़रूरी हो, यानी जो भी खाना आप बनाएं वो इतना बनाएं कि परिवार के लिए वो पूरा हो जाए। और उबला हुआ जो है वो पानी पियो, और अदरक तुलसी वाली चाय ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और जब हम भीग जाते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप खाना बनाएं अच्छी तरह से अपने हाथ धो लें, और जब भी खाना परोसें तब भी अपने हाथ धोकर परोसें, क्योंकि पता नहीं उस समय पे खाना बनाने के बाद हमने किन किन चीज़ों को हाथ लगाया है। कई बार कभी झाड़ू को छू लिया है, कभी और सामान लेकर दूसरी तरफ चले गए, कभी घेरे में चले गए थे फिर वहाँ से वापस आए, कभी अपनी गाय भैंस को देखने चले गए थे वहाँ से वापस आए। तो वहाँ से वापस आने के बाद भी हमें अपने हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। और अगर कोई ऐसा हो भी जाए कि भाई अचानक किसी को कुछ हो गया, तो ORS का जो घोल है वो आप ले सकते हैं, नारियल पानी है वो आप पी सकते हैं। और अगर ORS का घोल ना मिले तो यमुना ये भी बोलते हैं कि एक चम्मच चीनी और उसमें चुटकी भर नमक, वो वाले पानी का मिश्रण बनाओ और उसको पी जाओ, तो वो भी ORS का जो है वो काम करता है। हम तो यही कहेंगे सबसे पहले कि हमारी बहनें बीमार ही ना पड़े, हमारे बच्चे बीमार ही ना पड़े। तो जब बीमार कोई नहीं रहेगा और सब हंसते खेलते मुस्कुराते अपने घर में रहेंगे तो बात ही कुछ और हो जाती है। और जब सुरक्षित भोजन की बात करेंगे और मुंह पर मुस्कान रखेंगे तब तो कहना ही क्या है।
1: तो कुल मिलाकर बातें बहुत हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा गीत संगीत की तरफ चलती हूँ। सावन का मास चल रहा है, ऐसे में रिमझिम सावन के भी गीत सुन लेते हैं।
0: अच्छा

0: और भारत की वीरांगना क्रम में आज हम आपको बताएंगे सुचेता कृपलानी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश में 1963 से लेकर 1967 तक इन्होंने नेतृत्व किया था वहाँ का, और ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही थी। ये महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और संविधान में इन्होंने निर्माता की भूमिका भी अदा की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात करें तो इसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन ये भूमिका जो थी इन्होंने भूमिगत होकर निभाई थी। ये काफ़ी ईमानदार थी, स्पष्टवादी थी और सादा जीवन जीने वाली नेत्री थी।
1: बिल्कुल। और इस समय अगर बात करें तो 9 अगस्त की हम बात कर रहे हैं तो हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। जो भारत की अगर बात करें, पहचान की हम बात करें, तो हर घर तिरंगा की शुरुआत हुई है जो कि 17 अगस्त तक चलेगा।
0: बिल्कुल। और जब हर घर तिरंगा की हम बात कर रहे हैं तो हर घर तिरंगा जो है वो एक जन आंदोलन बन गया है। आप भी तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लीजिए, अपने बच्चों के को जो है तिरंगे का महत्व बताइए और उनको भी बताइए कि आपके लिए तिरंगा के साथ सेल्फी क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। केवल ये नहीं कि बस सेल्फी खींची और भेज दी और उस ग्रुप पे बता दे कि भी हमने आज तिरंगे के साथ जो है वो अपनी फोटो खिंचवा ली।
1: इससे ये होता है कि बच्चों के अंदर ये बात, ये जज्बा पैदा किया जाता है, ये तिरंगे का मान सम्मान, ये मेरा शान है, ये मेरा अभिमान है, अगर देखा जाए तो ये मेरे भारत की शान है। तो तिरंगा जो है, जो ये हर घर तिरंगा फहराया जाएगा, तो इससे बहुत सी आत्मीयता की बात भी जुड़ी हुई है कि तिरंगे का हम हर समय सम्मान करते हैं। तिरंगा अगर देखा जाए तो हमेशा शरीर के ऊपर के भाग में पहना जाता है, इस बात का भी बहुत

0: सम्मान किया जाता है, और कहीं भी तिरंगा अगर देखा जाए तो कहते हैं कि असम्मानित स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाता है, और हर घर तिरंगा अभियान इस बात का द्योतक है कि हम कितना सम्मान प्रकट करते हैं। और आने वाले 15 अगस्त को तो तिरंगा झंडा फहराएंगे ही, लेकिन शुरुआत तो अभी से हो चुकी है।
1: बिल्कुल।

0: और कमलेश, अब बात कर लेते हैं डिजिटल साक्षरता मिशन की। नेशनल डिजिटल लिटरेशन मिशन भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाना है। यह योजना लोगों को इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और कंप्यूटर चलाने में सक्षम बनाती है।
1: और कितनी अच्छी बात है कि अगर हमारे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों को इस तकनीक में माहिर कर दिया जाएगा तो जो एक दूसरे पर उनकी निर्भरता थी वो ख़त्म हो जाएगी, और उनको भी पता चल जाएगा कि अब कैश लेस जो है वो लेन देन हम सीख पाएंगे और डिजिटल भुगतान भी वो कर लेंगे, और जो बैंकिंग है, बैंकिंग का काम भी वो सुरक्षित

0: से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और इसके तहत नागरिकों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाद में इसका विस्तार प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के रूप में किया गया था, और इसमें इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल का सुरक्षित उपयोग भी कैसे किया जाए इस पर सिखाया गया था, कैसे हो सकता है ये।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: और
0: हाँ हाँ और आप कुछ कह रही थी, वो बोलो।
1: एक बात और बताना चाहती थी कि इसके लिए आवेदन करने की बात करें तो इसकी जो पात्रता है ये भी बताना बहुत जरूरी है कि आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, उसकी आयु 14 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और उसके परिवार में कोई भी सदस्य पहले से डिजिटल साक्षर ना हो।
0: और ग्रामीण परिवार के एक व्यक्ति को इस ज्ञान में पारंगत बनाना इस योजना का मुख्य काम है, और जिसकी हेल्पलाइन है वो है 1076।
1: बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उस पर हम गौर करते हैं और जागरूक होते हैं तो बहुत सी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारा तो प्रयास ही हमेशा यही रहता है कि कुछ अपने जब हम बताते हैं और कुछ अपनी बहनों की जब हम सुनते हैं, तो उसी से बात में बात हम निकालते चले जाते हैं, चाहे वो अपने त्योहारों की बात हो, चाहे अपने बच्चों से लेकर कोई बात हो, या अपने बुजुर्गों से रिलेटेड कोई बात हो, या हारी बीमारी की कोई बात हो, खान पान की कोई बात हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी हम बातें कहते हैं वो आपके लिए, आपके जरिए ही तो हम बताते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आपका ही है और आपके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए ही तो हम सखियां आती हैं।
1: बिल्कुल, और बात कर लें, पते की बात कर लें इस समय।
0: बिल्कुल, तो पता क्या है?
1: हमारा है जो पता है, गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नौ प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 1100001।
0: आपका और हमारा बना रहे यूं ही मेल, तो कीजिए आप हमें ईमेल feedback@gmail.com पर।
1: बिल्कुल, और अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा रविवार को, उसके बारे में भी बता दें हम। हमारा जो बातचीत का विषय है, ग्रामीण महिलाओं का पंचायत नेतृत्व और विकसित भारत में उनकी भूमिका, इस विषय पर आप बातचीत सुन सकेंगे।
0: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर,
1: और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: और इसी के साथ हम दोनों सखियों को
1: अनुमति दीजिए।
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे उनका मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और ये 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इस दौरान सामूहिक वंदे मातरम गायन, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। गृहमंत्री अमित शाह पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृहमंत्री ने आज गोरीमेदू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम

0: नियम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश की जा रही है। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चियनशी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. In Delhi, as part of the campaign, Lok Sabha BJP MP Basuri Swaraj paid floral tributes at the memorial of Pandit Madan Mohan Malviya in Malviya Nagar, followed by Tiranga Yatra from Pilanji village to Greater Kailash. Speaking to the media, Ms. Swaraj said the BJP has launched a week-long campaign starting today, during which party office bearers and workers will visit the memorials of national heroes and martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to the freedom fighters who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said, "They united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die." In a social media post, the Prime Minister said, "Their courage will always remain an inspiration for every Indian." Union Home Minister Amit Shah said the 3 new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on the 3 important pillars, that is technology, timeline and trust. He said this at the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police at the Police Training School ground in Garimendu.
0: Narendra Modi ji ke netrutva mein,
3: under the leadership of Narendra Modi, the government of India has replaced the colonial era penal code with 3 new Bharatiya Nyaya Sanhitas. Rather than being punishment oriented, these new legal codes are designed to deliver justice to citizens while remaining technologically capable, efficient and time bound. Ultimately,

0: भाई ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे उसका हिसाब नहीं। क्या खूब संदेश देता है फिल्म अवतार का ये गीत, जो आज हमने ली है आज की फिल्म एक ही फिल्म से में। कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और आप हैं अपनी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ, और आगे बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। साथियों, फिल्म अवतार रिश्तों, त्याग और आत्मसम्मान की कहानी है। अवतार एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। उसका सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें जिंदगी में सफल बनाना। वो अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसे के बाद अवतार की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और उसका काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक पिता के लिए उसकी अपनी तकलीफ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बच्चों का भविष्य। वो अपने दर्द को भूलकर बच्चों के लिए संघर्ष करता रहता है। यही अवतार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें बताती है कि माता पिता बच्चों को सिर्फ जन्म नहीं देते, वो अपनी पूरी जिंदगी उनके भविष्य के नाम कर देते हैं। तो फिल्म पर बातें जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जानकारी के बाद आइए फिर बात करते हैं आज की फिल्म अवतार के बारे में। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक रोमांटिक हीरो के रूप में याद किया गया, लेकिन अवतार में उन्होंने एक उम्रदराज, संघर्षशील और भावुक पिता की भूमिका निभाई। उनकी आंखों में दर्द है, चेहरे पर मजबूरी है, लेकिन भीतर आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। अवतार का किरदार हमें ये महसूस कराता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की जरूरतें भले ही कम हो जाएं, लेकिन उसका सम्मान, अपनेपन की चाह कभी कम नहीं होती। और राधा के किरदार में शबाना आजमी ने भी बेहद संवेदनशील अभिनय किया। राधा अपने पति की सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

साथियों, वक्त सचमुच गुजरता जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। अवतार और राधा ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया था उसका उन्हें कोई हिसाब नहीं चाहिए था। वो बस चाहते थे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान और अपनों का साथ। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, बच्चों की अपनी दुनिया बन जाती है और एक दिन अवतार और राधा को महसूस होता है कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उसी परिवार में उनके लिए जगह कम पड़ रही है। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा है क्योंकि सवाल सिर्फ घर से निकलने का नहीं है, सवाल है क्या अपने ही घर में माता पिता अपनेपन के लिए तरस सकते हैं। अवतार की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान। वो परिस्थितियों से लड़ता है लेकिन अपनी इज्जत से समझौता नहीं करता। यही फिल्म को एक अलग ऊंचाई देता है। अवतार हमें बताती है कि किसी इंसान की उम्र बढ़ जाने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि शायद उस समय उसे हमारे साथ की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है।

साथियों, आज की फिल्म अवतार की हम आज बात कर रहे हैं एक ही फिल्म से। कार्यक्रम में फिल्म के संगीत को याद किए बिना अवतार की चर्चा अधूरी है। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीत कहानी के भावों को और भी गहरा करते हैं, खासकर गीत चलो बुलावा आया है। ये गीत आज भी सुनने वालों के मन में एक अलग भाव पैदा करता है। और गीत ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, किशोर कुमार की आवाज़ और आनंद बख्शी के सरल शब्द इस गीत को बेहद यादगार बना देते हैं। तो आपको इस फिल्म से जुड़े और कौन कौन से गीत अच्छे लगे और फिल्म की कहानी की कौन कौन सी रोचक बातें अच्छी लगी, हमें बताइए IP Radio Delhi@gmail.com पर।

और देखते ही देखते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं बहुत सारी ईमेल। तो चलिए नाम ले लेते हैं हम अपने उन श्रोताओं का जिन्होंने भेजे हैं बहुत सारे मैसेजेस। तो बहुत सारे श्रोताओं ने रिपीट मैसेजेस भी भेजे हैं जिनके कारण शायद हम कुछ श्रोताओं के नाम ना ले पाएँ, तो मैं अभी से माफ़ी मांगती हूँ उन सभी से। तो हमारे साथी हैं स्वर्ण सिंह, फारूक अली खान, संदीप मक्कड़, अनिल मोहन, संजय ढींगिया, भागवत वर्मा और जुड़े हैं बिट्टू गगनेजा, राजकुमार डूडी, धर्मेंद्र छिप्पा, सुदर्शन मुखी, राधेश्याम देवांगन, कमलकांत गुप्ता, आर कुमार, धर्मेंद्र छिप्पा और हैं प्रवीण। ये सभी साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी ने ये कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया भेजी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।

साथियों, 1983 की अवतार सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये माता पिता के त्याग की कहानी है, ये पति पत्नी के साथ की कहानी है, ये बदलते पारिवारिक रिश्तों की कहानी है और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान के साथ जीने की कहानी है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वर्से का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतज़ाम इलाके के सभी 20 ज़िलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत की हामिल है क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में मजकूरा मुहिम के तहत लोकसभा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी सुराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलानजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी सुराज ने कहा कि इस बार का यौम आज़ादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आज़ादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके दौरान पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मुल्क के जाबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आज़ादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाईस तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। यौम आज़ादी के मौके पर मध्य प्रदेश में 124 कैदियों की सज़ा में नरमी की जाएगी। इनमें से उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 118 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 6 दीगर कैदियों को खसूसी रियायत दी जाएगी। इन कैदियों के अच्छे तर्ज अमल और जाब्तों के मुताबिक काम करने के उनके रवैये की बुनियाद पर ये रियायत दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए दीगर कैदियों की भी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा रिहा किए गए कैदियों को मुआशरे के असल धारे में वापस आने का मौका मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, वो 3 अहम सुतूनों, टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गौर रेमिडो में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड

0: आधारित नहीं है। ये न्याय संहिता की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में, जलाका और भद्रक में बैतरानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है, जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी कल तक तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। चीन में शदीद आधी तूफान डॉल्फिन से निमटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने 1300 से ज़्यादा परवाजें मंसूख कर दी हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपे समेत मुल्क के शिमाली हिस्सों में पहुंचा था, जिसके सबब वहां तेज़ बारिश हुई। ताइवान की बाज़ हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के ख्वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान चियांशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर ये बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला BWF टाइटल जीता। अश्मिता चलिहा ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। खास खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country to celebrate patriotism and national unity. Home Minister Amit Shah says 3 new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one who accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Keralam. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chaliha clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026.

ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय

0: संहिता की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिता की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
0: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
2: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन

0: AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 2:30:20 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।
4: सोमो सोमो, वो कहानी सुना हो ना, तुमने कहा था।
5: कहानी?
4: हाँ।
5: कौन सी कहानी?
4: ओ जब हरिप्रसाद गिचड़ में गिर पड़ा था। कहा नहीं था? ओ, ओ लोमड़ी की क्या?
5: लोमड़ी? क्या वो? वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
4: ओ, सुना हो ना?
5: उतरो, उधर बैठ जा।
4: सुना हो ना? मारते क्यों रहते हो?

0: क्या? पैर नीचे रख, रख नहीं। कहानी सुननी या कि नहीं? तो ये दिया बंद करो।
1: गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी?
2: सुनाओ ना, किस तरह से इस चुलबुली आवाज को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी कलाकार हैं जानी मानी अभिनेत्री, और अपने अदाओं से, अपने अभिनय कला से हम सबका दिल जीतने वाली श्रीदेवी। आज की हमारी हैं कलाकार, स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी का नमस्कार।

0: ये जो आप सुन रहे हैं श्रीदेवी और कमल हासन साहब की आवाज़ में, ये उनकी एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू जाने वाली फिल्म आई थी सदमा, उससे जुड़ा हुआ ये नगमा आप सुन रहे हैं।
1: कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहाँ तक पहुंची?
2: सोमू गिर पड़ा।
1: सोमू नहीं, किधर?

0: सब कीचड़ कीचड़ सब कीचड़।
1: कुत्ते जब भौंक के भाग गए, कीदड़ जी हांडी से निकले।
2: हाँ।
1: और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
2: अच्छा।
1: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है?
2: मुझे पता है।
1: क्या पता है?
2: गीदड़।
1: चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
2: क्या किया?
1: मोटी आवाज में गुर्राया,
3: मैं राजा हूँ।
4: दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जी हाँ, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 1967 में एक तमिल फिल्म से शुरुआत की थी। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1978 से एक फिल्म आई थी, 16वां सावन। उस फिल्म के जरिए श्रीदेवी ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। लेकिन उन्हें असली जो पहचान मिली वो मिली 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म हिम्मतवाला से। और इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसी फिल्म से, यानी हिम्मतवाला फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज़ में सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिव काशी तमिलनाडु में हुआ था। उनके बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था और उनके पिता अयप्पन जो कि वकील थे और उनकी मां का नाम राजेश्वरी था।

और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने केवल 4 वर्ष की उम्र से ही एक बाल कलाकार के रूप में किया था और उन नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूम बत्ता जो कि 1971 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था।

श्रीदेवी भारतीय सिनेमा की ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपने बेहतरीन डांस और शानदार अदाओं के माध्यम से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देती हैं। उन्होंने तोहफा, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, खुदा गवाह, चालबाज, नगीना और लम्हे जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। और सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही क्यों, उन्होंने तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जैसी बहुत सी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं लम्हे फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा ये गीत है जो कि अनिल कपूर भी इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ थे, कभी मैं कहूँ।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं, और ये एक संदेश आया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत निरंजन सौम्या और अविरल सिंह का। इन्होंने लिखा है, कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है जो कि आप श्रीदेवी के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं, और गीत तो हमारे दिलों को छू रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत सारी सफलता हासिल की। उन्होंने इज्जत, दौलत और शोहरत बहुत सारा कमाया, और कुछ तो ऐसे मकाम हासिल किए जिन्हें हासिल कर पाना आजकल की अभिनेत्रियों के लिए एक सपना सा है। और ऐसी ही दिग्गज अभिनेत्री का नाम था श्रीदेवी। उन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर के साउथ के सिनेमा तक कई भाषाओं में काम किया, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी ने महज 15 साल की उम्र में अपने से लगभग 3 गुना ज्यादा उम्र वाले एक्टर के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। जी हाँ, 55 साल के हीरो एनटी रामाराव थे, जो कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थे, और उनके साथ हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी श्रीदेवी। और तब उनकी उम्र थी महज 15 साल की, और अपने से लगभग 40 साल बड़े हीरो के साथ उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। और मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है 1969 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म वेटा गाडू। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ NTR थे, लेकिन जो चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी इस फिल्म के एक गाने को

को लेकर जिसमें श्रीदेवी ने अपने से तीन गुना बड़े सुपरस्टार एनटीआर के साथ एक गाने में रोमांस किया था। वहीं अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्मों में भी श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और एक फिल्म आई थी चांदनी, जो कि अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और इस फिल्म का एक गाना मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी गाने को लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अरुणेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत ही अच्छा हूं और उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और ये संदेश आया है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने लिखा है कि श्रीदेवी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, आप उनके बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, दिलचस्प किस्से भी सुना रहे हैं और साथ ही दिल को भा जाने वाले गाने भी सुना रहे हैं। आपको उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज आया है गाँव लोहगढ़ ठाकुरा वाले से, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कार्यक्रम का समय सीमित है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ और मैसेज आपके इस कार्यक्रम में शामिल करूं। लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और एक ही कलाकार, माफ कीजिएगा। और आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। और आज की हमारी कलाकार हैं श्री देवी। और श्री देवी की करियर की यादगार फिल्मों की अगर बात करें तो सदमा, मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज, चांदनी और लम्हे हैं। इसके अलावा 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली थी और इसके बाद फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया था। और फिर साल 2012 आया जब उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पर्दे पर धमाकेदार और सफल शुरुआत की। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये हवा हवाई सॉन्ग।

और इसी बीच एक और संदेश आया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और बहुत बहुत आपको बधाई इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही बहुत ही प्यारे से गाने सुनवाने के लिए। और एक और संदेश जल्दी से ले लेते हैं, ये आया है हमारे पास ग्राम रजौनी, जिला होबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके समस्त परिवार के लोग। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री देवी के बारे में, और श्री देवी की अगर सम्मान की बात करें तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था, और उनकी आखिरी फिल्म मॉम 2017 में आई थी, और मरणोपरांत इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी दो बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। जाह्नवी कपूर भी एक अभिनेत्री हैं और उनकी कई फिल्में आजकल आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

श्रीदेवी को भारत की पहली महिला सुपरस्टार भी माना जाता है। उन्होंने मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम, खुदा गवाह जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनके चेहरे की चमक और पर्दे पर मौजूदगी पीढ़ियों तक सराही जाएगी। फरवरी 2018 में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे उनके फैंस के साथ साथ पूरे फिल्म जगत में बेहद लोगों को झटका लगा। उनकी विरासत आज भी आज के दौर के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को प्रेरित करती है।

तो दोस्तों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। तो अब अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, और आखिरी में सदमा फिल्म से एक प्यारा सा नगमा आपको आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणीश द्विवेदी का नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो सावन को महीना चल रहे हो, ये परम सुहावनो महीना है।
1: ये तो हमें पता चल रही है, जब आप हरी हरी साड़ी पहन के आमे तो बातें पता चल जाए कि कौन सा महीना चल रहे हो अब।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, जब हरियल हरियल सावन को महीना है तो आवरण भी हरियल हरियल है, बात भी हरियल हरियल है, तो यहाँ में तो कोई दोराए है ही ना है। देखो कि श्रावणी अमावस्या अब आए रही है, और याकू तो हमारे ब्रज में हरियाली अमावस्या के रूप में जानो जाए।
1: देखो चंपा जी, मुकू तो या मारे याद आई कि मैं कल जब संध्या को घूम रहा तो छोटी छोटी बालिका बड़ी सुंदर सी मल्हार गा रहे हैं, हरियल हरियल बहना मेरी है रहे जी, हरियल हरियल के संग उनने इतने सामाजिक और प्राकृतिक स्वरूप निर्मित कर दिए कि मुकू तो

0: क्योंकि ये सावन तो हमारे कितने निकट आ जाए है।
1: नृत्य गोपाल जी, अमावस्या तिथि तो हर महीना में आवे, पर आप देखो कि जो श्रावण मास की अमावस्या है, बाको तो नाम भी हरियाली अमावस्या के रूप में है।
0: चंपा जी, हरियाली अमावस्या को यदि ब्रज के काऊ देवालय में आप पहुंच गए ना, तो वहां के श्रृंगार ऐसे हरे हरे होंगे, पत्तिन ते श्रृंगार करे गए होंगे, फूलन ते श्रृंगार किए गए होंगे।
1: फुलाऊ ऐसे नृत्य गोपाल जी, यहाँ में चंपा है, चमेली है, मोगरा है, टगर है, रायवेल है, कौन सा फूल ऐसा ना है, कौन सी ऐसी पत्ती ना है जो इन नोरान में इनने सजावे के काम में नाए आए रही हो।
0: जब कवि और हमारे मध्यकालीन भक्त इन सब फूलन को पत्तन को श्रृंगार में जब अपने छंदन में वर्णन कर दें, तो तनिक सोचो तो सही कि भारत को प्रकृति प्रेम कितनो गहन है।
1: हाँ नृत्य गोपाल जी, और यही लिए जो हमारे बाणीकार है, उनने हर उत्सव और हर पर्व पे ही कितने छंदबद्ध रचना करी है।
0: जी हाँ चंपा जी, तनिक देखो तो सही, हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज, इन दोनों को तो लोक जीवन में बड़ो भारी महत्व है।
1: नृत्य गोपाल जी, लोक में भी महत्व है और देवालयी संस्कृति में भी। आप देखो कि हरियाली तीज आ रही है तो राधा रानी है सफेद छतरी में आके दर्शन देंगी, श्रद्धालु उनको पालकी में सवार होके उनकी डोला सवारी निकलेगी।
0: जी हाँ चंपा जी, बांके बिहारी मंदिर को जो भव्य हिंडोला है, यही दिन यानी हरियाली तीज को ही वाके दर्शन हुए हैं, और यही के संग राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में,
1: सप्त देवालय में
0: हाँ सप्त देवालय इनके जो हिंडोला उत्सव हैं, वे या हरियाली तीज के दिन ही हुए हैं।
1: और हाँ नृत्य गोपाल जी, बाणीकारन के जो पद उनने बद्ध करे हैं उनको भी सस्वर गायन और वादन और वाचन होवे हैं।
0: जी हाँ चंपा, आपने वाणी कारण की बात करी है, तो तनिक देखो कितनो सुंदर सो लाल बलवीर को एक पद है। दो गर्वीले छैल छवि में, छबीले प्रेम रंगन रंगीले, दो श्याम तन गोरे में, दो सुर गामे दो को रिझा में, सुन दो हरसा में मन बांधे प्रेम डोरे में, दो है प्रवीण अंग अंगन नवीन, दो रसलीन भय रूप के झकोरे में, लाल बलवीर दासी करत खवासी आज, झूलत निकुंज राधा रमन हिंडोले में।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप हरियाले तीज के गीत को सुन रहे हते। तो नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो यह हरियल हरियल सावन मास की तो जितनी भी बात करें ना उतनी ही कम है। देखो ये सावन को जो महीना है मनभावन महीना है, और षट ऋतु को जो वर्णन है वा में या सावन की ऋतु को भी पावस ऋतु के रूप में बड़ा उल्लेख भयो है। और यही के काजे कहो गयो है ना, दामनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते। तो ऐसी बात है, जितनी बात या सावन के प्यारे से महीना की हम करें उतनी ही कम है। तो अपने भैया बहनान को आप कहें तो ज्यादा जानकारी की ओर ले चलें।
1: जी हाँ चंपा जी, अवश्य ले चलो ना।
0: तो आओ प्यारे भैया बहनाओ, अब हम आपको सुनवाए रहे हैं ये वार्ता जाको विषय है सावन के हिंडोला। आलेख है महेश मंगल जी को, वाचन स्वर है नृत्य गोपाल जी को।
1: ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सब श्रोतान को महेश मंगल की राधे राधे। श्रोताओ वार्ता के संग मैं महेश मंगल आपके संग हूँ। अजी श्रोताओ, सावन आते ही ब्रज की छटा कछु निराली है जाए, जैसे कि पूरे भारत में या वर्षा ऋतु को स्वागत करवे के ताई जनमानस में उल्लास अलग ही दिखाई पड़े है। जब बात ब्रज की चले तो हम सब जाने हैं कि ब्रज की संस्कृति तो बड़ी उत्सव धर्मी संस्कृति है, और यहाँ तो मान्यो ही जाए है कि यहाँ महीना के 30 दिनान में 31 त्योहार हुए हैं। प्रिया प्रियतम, राधा कृष्ण को प्रतिदिन लाड़ लड़ायो जाए, उनकी ताई हर रोज कोई ना कोई उत्सव हु मनायो जाए। अब वर्षा ऋतु की जब बात होए तो फूल बंगला, हिंडोला, झूला और घटा दर्शन ये ब्रज के प्रमुख उत्सव हैं। हिंडोला उत्सव प्रकृति और मानव के स्नेह मिलन को प्रतीक है। सावन के महीना में ब्रज के देवालयन में जब हिंडोला दर्शन हुए हैं तो वहां पे स्थानीय जनन की और श्रद्धालुन की आस्था को सैलाब देखते ही बने। यह ब्रज की प्राचीन परंपरा है। सावन के आते ही मंदिरन में हिंडोला सज जाए। ब्रज के सब प्रसिद्ध मंदिरन में सोने चांदी के लकड़ी के झूला बने भये हैं। आप तो जाने हैं कि दो बड़े स्तंभन के बीच लंबवत एक खंब डाल दियो जाए, झूला बन के तैयार है जाए, और वापे जो हिंडोला डालो जाए वहां में प्रिया प्रियतम को विराजित करके उन्हें झूला झुलायो जाए। अजी यह हिंडोला की जो साज सज्जा है ना, वह वो बड़ी आकर्षित करे। फूल फल पत्ती रंग बिरंगे कपड़ा रंग बिरंगे पेपर इन सब सोभा को सजायो जाए, और यह सजावट में प्रकृति के साम्य की अधिकता रहे। आसमान में जैसे बादल होए मंदिरन में घटा छवि हु वाही प्रकार की रहे। जासो आज हम कहें कलर कंट्रास्ट या कलर कम्बिनेशन या को अगर स्वरूप आपको देखना हो तो ब्रज के हिंडोलान में देखो, ब्रिज की घटा दर्शनन में देखो। खुले आसमान के बीच झूला पड़े, कदम्ब और आम के वृक्ष झूला के ताई सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष हैं। मैदानी भाग के ये वृक्ष बड़े आकर्षित करे हैं। ब्रिज के झूला गीतन में कदम्ब और आम को खूब उल्लेख मिले। तनिक देखो ना, झूले श्याम राधिका रानी, झूला पर्यो कदम की डार। और हिंडोला को जो मुख्य त्योहार है ना जी, वह हरियाली तीज के दिन हुए है। अब यह त्योहार को ब्रिज के संतन की जो संप्रदाय हैं, वे अपने अपने ढंग से मनावे हैं। ब्रिज में बल्लव संप्रदाय को बहुत प्रभाव रहो है, यानी यह पुष्टि मार्ग में एक महीना तक झूला उत्सव चले। द्वारिकाधीश श्रीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोकुल चंद्रमा जी, ये जो मंदिर हैं, इनमें घटा दर्शन और हिंडोला उत्सव परंपरागत रूप में मनायो जाए। द्वारिकाधीश मंदिर पुष्टि मार्ग को प्रमुख केंद्र है। मथुरा में स्थित यह मंदिर में श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी ते श्रावण पूर्णिमा यानी राखी उत्सव तक नित नित नई नई घटान को आयोजन हुए। काली, नीली, पीली, हरी, गुलाबी अनेक अनेक रंग की जो घटा हुए उनके बीच द्वारिकाधीश हिंडुलान में दर्शन दे हैं। वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर जो हरिदास जी को प्राणाधार स्वरूप है, या में हरियाली तीज के दिन विशेष हिंडोला दर्शन हुए हैं या उत्सव को देखवे के ताई दूर दूर सो श्रद्धालु आमे। राधा बल्लभ संप्रदाय में हिंडोला की विशेष परंपरा है। यहाँ हित हरिवंश जी के द्वारा जो स्थापित राधा बल्लभ मंदिर है, या में हरियाली तीज ते पूर्णिमा तक 13 दिन को हिंडोला उत्सव मनायो जाए। और यहाँ की विशेषता यह हुई है कि यहाँ पे प्रातः काल और सायंकाल अलग अलग हिंडोला दर्शन हुए। या मंदिर में हिंडोला के अवसर को विशेष नाच गायन सबको आकर्षित करे। यह संप्रदाय के विभिन्न मंदिरन में एक विशेष परंपरा है कि समाजीन को आमंत्रित करके इकट्ठो करो जाए, समाज जुड़े और फिर ये समाजी बड़े प्यार सो राधा कृष्ण को प्रिया प्रियतम को नित नवीन स्वरूप की आराधना के संग उनको झूला झूला में हिंडोला झूला में यहाँ राधा बल्लभ लाल को बड़े भक्ति भाव सो झूला झुलाइवे को बड़ो भारी महत्व है। जब बात पुष्टि मार्ग की चले तो पुष्टि मार्ग के जो बड़े मंदिर हैं उनमें राजस्थान भरतपुर के कामा में स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में हु झूलान की हिंडोलान की बड़ी परंपरा है। यहाँ शुक्ल पक्ष की द्वितीया ते पूर्णिमा तक हिंडोला दर्शन होए और यहीं के श्री चंद्रमा जी मंदिर में पंचमी ते हिंडोला के दर्शन आरंभ होए। देवालयन में हिंडोला को सबते अधिक महत्व बरसाना स्थित श्री जी मंदिर में है। श्री किशोरी जी पूरे महीना सावन में हिंडोला झूलें, हरियाली अमावस्या को जगमोहन में हिंडोला दर्शन को तो अद्भुत ही आनंद है। हरियाली तीज के दिन श्री जी मंदिर प्रांगण में खुले आसमान में आमे हैं। यहाँ पे जो बढ़िया सी एक चौखंडी बनी हुई है यहाँ पे खुले आसमान में वृषभान पौर पे श्री जी के दर्शन होए। स्थानीय मेलो जुड़े, आसपास के गामन के ब्रजवासी कीर्तन मंडली के संग आमे, प्रियाजू के सम्मुख हिंडोला गीत मल्हार रसिया भजन आदि गाए जाएं और ब्रज बालान के ताई तो यह विशेष अवसर है। गांव गांव की बालिका एकत्रित है के गीत गाती भई मंदिर प्रांगण में आमे और सामूहिक रूप सो नृत्य गान करती भई किशोरी जी को बड़े मंगल मंगल झूलान के गीत सुनामे और यह संगीतमय वातावरण की छवि ऐसी अद्भुत होए कि सब देखवे बारे हु आश्चर्यचकित रह जाएं। दर्शन के पश्चात नृत्य गान करते भए युवा और युवती नीचे गौशाला के सम्मुख विशाल मैदान में आ जाएं और यहाँ पे एक ओर बालकन की नृत्य प्रतियोगिता होती रहे और दूसरी ओर बालकन के ताई दंगल को भव्य आयोजन करो जाए। यह प्रकार बरसाना में भव्य हिंडोला उत्सव को आयोजन हुए है। हिंडोला लीला को गायन हुए और मंचन हु यहाँ पे हुए है और अनेक जगह पे या को मंचन देखो जाए है या में दर्शा

0: हो जाए कि किशोरी जी नंदगाम के नंद भवन में खड़ी हैं। एक बंजारो बरसाना की ओर जा रहे हो और बरसाने को बंजारो है याकू पहचान के किशोरी जी वासो निवेदन करें और वासो जो कहें वह बड़ो भावुक सो याको मंचन है यह बनजारो सखी बीरन नगर को कहियो संदेशो सखी जाए। अपनी सखी को भेजें कि या बंजारी को ये संदेशो दे दे बहन तुम्हारी रानी राधिका बेग ही ले हो बुलाए सावन आयो सुघड़ नीरो अब मुए कछु न सुहाए बिन मा जाए सुख नहीं। यही प्रकार हिंडोला लीला को एक मधुर स्वभाव है जामे श्री कृष्ण प्रिया जी को झूलवे को आमंत्रण दे हैं। झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदिनी सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई मेघन झरी लगाई परे बूंद मंदनी झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदनी पहरो सुरंग सारी मानो विनय हमारी मुख चंद की उजारी तू गति मयंदनी झूलन चलो हिंडोलना वृषभानु नंदनी। ब्रजभाषा के कवि ने वर्षा ऋतु में हिंडोला को सुंदर वर्णन करो है। यहाँ में चार प्रकार के वर्णन प्रमुख हैं या वर्ण विषय रहे हैं। वर्षा ऋतु को वर्णन, हिंडोला वर्णन, राधा कृष्ण को झूला वर्णन और वर्षा संबंधी अन्य प्रयोग। सूरदास के हिंडोला वर्णन में एक बड़ो सुंदर सो पद है सावन की तीज हिंडोरे झूले राधा प्यारी सुन के मनमोहन आए हैं झूलन सखी भेष के श्याम आए प्राण प्यारी पास अंग अंग भूषण बेनी भरी फूलन नैनन कजरा सो है देखत त्रिभुवन मोहे तापर केशन के मुक्त की झूलन सूरदास प्रभु नारे रूप किए प्यारी संग झूलत यमुना के कूलन। चैतन्य संप्रदाय के अनन्य भक्त गदाधर भट्ट जी ने हिंडोला को बड़ो सुंदर वर्णन करो है रंग हिंडोलना मिल झूलत ये फूलत दो मन ही मन अरुण प्रीत बरबसन विराजत अलि गोरे सांवरे तन प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं चारों ओर सखी खड़ी हैं मधुर स्वर में गायन है रहो है। कवि लिखे हैं ललिता ललित बजाए रिझावत मधुर बीन कर लीने जान प्रभात राग पंचम षठ माल कोस रस भीने सुर हिंडोल मेघ गालव पुने सारंग सुर नर जान सुर सावंत झयाली ईमन करत कान रोगान। हिंडोला झूल के आते हुए प्रिया प्रीतम की छवि को वर्णन करते हुए सूरदास ने बड़ो सुंदर पद लिखो है भीजत कुंजन में दो आवत ज्यो ज्यो बूंद परत चूनर पे त्यों त्यों हरि उर लावत तैसे मोर कोकिला बोलत पवन बीज घन धावत ले मुरली करमंद घोर स्वर राग मलार बजावत अधिक झकोर जबे मेघन की द्रुम तिरछिन बिरमावत वे हसी ओट करत पीतांबर ये चूनरी उढ़ावत भीजे राग रागनी दो भीजे जल छवि पावत सूरदास प्रभु रीझ परस पर प्रीत अधिक उपजावत। अजय कभी बिहारी ने हूँ एक ही दोहा में यह हिंडोला को बड़ो सुंदर श्रृंगारात्मक वर्णन कर दियो। उनने एक दोहा लिखो हेर हिंडोरे गगनते परी परी सी टूटे धरी धाय पिय बीच ही करी खरी रस लोटे। यह प्रकार ब्रज संस्कृति और ब्रज के देवालयन में जो हिंडोला की परंपरा है वह में कलात्मक सांस्कृतिक और लोक विरासत को अद्भुत समागम देखो जाए। अनेक ऐसे छंद कवि ने लिखे हैं जैसे बहुत सुंदर सो छंद है लाल माई बांधे कंसु भी पाग हरित भूमि यमुना तट ठाड़े गावत राग मल्हार श्री विट्ठल गिरधरन छवीलो श्याम घटा अनुहार। एक और छंद देखें कुम्बनदास ने बड़ो सुंदर सो वर्णन करो सखीरी मुई बूंद अचानक लागी सोबत होती मदन मदमाती घन गरजो तब जागी दादुर मोर पपीहा बोले कोयल शब्द सुहागी कुम्भनदास लाल गिरधर सो जाय मिली बड़ भागी। तो यह प्रकार मध्यकालीन कवि ने इन हिंडोलान को झूलान को घटान को बड़ो सुंदर वर्णन करो है। सब श्रोतान को राधे राधे।
1: प्यारे भैया बहनाओं अभी आप ये वार्ता सुन रहे हते जाको विषय हो सावन के हिंडोला आलेख हो महेश मंगल जी को और वाचन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी
0: जी चंपा जी
1: देखो आपने जो बड़ी बृहद परंपरा है ना सावन के इन उत्सवन की पर्वन की कौन से देवालय में कैसे मने और हमारी लोक की जो संस्कृति है वह को कैसे आत्मसात करे ना या वार्ता के माध्यम से आपने पढ़ के सुना आयो है तो या के

0: का जो देखो हम आपको आभार करे हैं, पर नृत्य गोपाल जी,
1: जी चंपा जी,
0: देखो एक बात हमारे मन में आ रही है
1: जी, कहो तो सही,
0: कि कृष्ण भक्ति को भाव है ना इतनो अनन्य है कि चाहे ब्रज ते अलग कोई कहीं को भी है, अगर ब्रज में वा को मन रम गयो, ब्रज की ओर अपनो सर्वस्व त्याग के, सर्वस्व भूल के ना चलो आवे है।
1: अरे चंपा जी देखो, आपने ये बात कही है तो मुकू बस बरबस स्मरण है रहे हो है, आपने नाम सुनो है भक्तिमती बांकावती को,
0: हाँ।
1: 1703 ढूंढाण क्षेत्र में उनको जन्म भयो, और आप महाराज किशनगढ़ जो महाराज राज सिंह है ना उनकी पत्नी है, और आपको मूल नाम तो हो ब्रज कुमारी, पर वे श्रीमद् भागवत के उन प्रसंगन थे जिनमें के कृष्ण चरित्र वर्णन है,
0: हाँ।
1: इतनी आकर्षित वहीं ब्रज आई और ब्रज में ही कृष्ण भक्ति के रूप में उनने अपनो जीवन व्यतीत कर दियो,
0: ब्रज की ही होकर रह गई।
1: जी चंपा जी,
0: ते गोपाल जी, बांकावती जैसे ब्रज में ही आके ब्रज की ही होकर रह गई और उनने छंद और पदन की रचना करी, ऐसी अगर हम वानगी देखें, ऐसी परंपरा की ओर जाएंगे ना, तो याको तो है ना एक बहुत बड़ो इतिहास है, कितने ही आए भक्तजन ब्रज में आए के, यहाँ की रज में ऐसे मिले, उनने ऐसा अपने आप को आत्मसात कर लियो कि फिर भी ब्रज छोड़ के अन्यत्र ना गए।

0: प्यारे भैया बहनाओं, अभय आप ये सावन की मल्हार सुन रहे हते।
1: पर अब तो घड़ी कह रही है कि आज के ब्रजमाधुरी कार्यक्रम के समापन को समय है रहे हो है।
0: हाँ, नृत्य गोपाल जी आए हैं तो हमें जानो भी पड़ेगो। कोई बात ना है प्यारे भैया बहनाओं, फिर काउ रोचक विषय पे चर्चा लेके आपके संग फिर जुड़ेंगे। इन्हीं प्रेम भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यही संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वी के तोमर के संग जायवी की अनुमति प्रदान करें।
0: नमस्कार।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: नमस्कार, रेडियो किड्स में मैं सुरति आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 15th of August यानी कि इंडिपेंडेंस डे हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घरों में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखिए, आपने फ्लैग्स लेकर अपने हाथ में घूमते हैं, कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को। आज के रेडियो किड्स, आज के जो बच्चे हैं ना, वो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है। और ऐसे ही स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो अपनी प्यारी प्यारी सी बातों से आपको बताएंगे कि कैसे वो सभी मिलकर इंडिपेंडेंस डे एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, कितनी खासियत जानते हैं वो इंडिपेंडेंस डे की और कैसे उसको मनाते हैं, सब जानेंगे। क्योंकि आज मेरे साथ कौन मौजूद है स्टूडियो में?
1: रेडियो किड्स।
0: अमेजिंग, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही अडोरेबल रेडियो किड्स यहाँ पर हैं।

0: सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्यूट बच्चे से जो ठीक मेरे पास है। सबसे पहले इसका नाम जानेंगे, उसके बाद जितने प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो सब अपना नाम बताएंगे और अपनी क्लास बताएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले कौन है?
1: MB पार्थिव प्रियन, क्लास 5th।
2: मेरा नाम उमर सुल्तान है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ।
3: मैं हूँ आस्था अदलखा, कक्षा 10 की छात्रा।
4: मैं शनाया कटारिया, कक्षा 8 की छात्रा हूँ।
0: क्या बात है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम 5th स्टैंडर्ड के बच्चे से, सबसे छोटा है ये MB पार्थिव प्रियान। पार्थिव ये बताओ, इंडिपेंडेंस डे के बारे में आप क्या जानते हो और हमारे लिसनर्स को आप क्या बताना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे के बारे में?
1: 15 अगस्त हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा झंडा लहराते हैं। इस दिन 1947 में हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी।
0: क्या बात है, वेरी गुड, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। तो पार्थिव प्रियान ने तो हमें बता दिया 15 अगस्त जो है हम हर साल क्यों मनाते हैं। अब हम पूछते हैं उमर सुल्तान से। उमर आप क्या बताना चाहते हो?
2: मैं एक कविता बोलूंगा 15 अगस्त पे। देखो बच्चों ये झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सहारा, रहे सदा ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे ये छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी ना करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे ये सदा महान।
0: जय हिंद,
2: जय हिंद।
0: क्या बात है, तालियां प्लीज, जोरदार तालियां। पार्थिव आपको कौन सा गाना पसंद है?
1: मुझे मां तुझे सलाम गाना पसंद है।
0: क्या बात है, वेरी गुड। उमर सुल्तान आपको कौन सा पसंद है?
2: मुझे भी मां तुझे सलाम ही पसंद है गाना।

0: शनाया कटारिया हमारे साथ है जो कि 8th स्टैंडर्ड में है. शनाया, आप क्या बताना चाहते हो हमारे लिसनर्स को इंडिपेंडेंस डे के बारे में? आप कैसे सेलिब्रेट करते हो?
1: हम अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे. फ्लैग होस्टिंग होती है, सभी में इतना उत्साह रहता है, खुशी का माहौल रहता है पूरे स्कूल में. हम इस आजादी महोत्सव को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं.
0: वेरी गुड. हमारे लिसनर्स को क्या बताना चाहोगे, आप क्या सुनाओगे इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड?
1: आज मैं आप सबके समक्ष एक देशभक्ति गीत लेकर आई हूँ, अपनी माटी. वास्तव में भारत एक देश के भीतर एक दुनिया है जिसकी माटी का कण कण करुणा, प्रेम, बलिदान और शौर्य की मिसाल है. हमारी विविधता, हमारे लोग ही हमारी पहचान है. तो आइए इस गीत के माध्यम से देश की माटी के प्रति अपना समर्पण करें.

0: तो हमारे साथ प्यारी सी आस्था अदलका यहाँ पर है। आस्था, आप क्या सुनाना चाहते हो इंडिपेंडेंस डे पर हमारे लिसनर्स को?
1: आज मैं एक महान रानी के बारे में बताना चाहूंगी जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया और उनको उनकी जड़ों तक से हिला दिया। रानी वेलु नचियार, जिन्हें आप में से कई तमिल श्रोता उन्हें वीर मंगई यानी एक बहादुर महिला के नाम से जानते हों। रानी नचियार को बचपन से ही युद्ध के कई तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया, इसमें युद्ध के हथियारों का उपयोग, वल्लरी, सिलंबम जैसी मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल थे। जब उनके पति मुथुवदुगनाथ पेरिया वुडिया थेवर 1772 में कलैयर कोइल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ लड़ाई करते हुए मारे गए तो वे संघर्ष में शामिल हो गईं और उन्होंने हैदर अली की मदद मांगी। हैदर अली ने उनकी 5000 सैनिकों और बारूदों के साथ मदद की। शुरू में हैदर अली ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वे सैनिकों, हथियारों और प्रशिक्षण के साथ उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गए। जब वेलु नचियार को वह स्थान मिला जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कुछ गोला बारूद संग्रह किया था, तो उनके कमांडर कोइली ने अपने शरीर पर घी लगाया, खुद को आग लगा ली और ईस्ट इंडिया कंपनी के शस्त्रागार में कूदकर आत्मघाती हमला कर लिया। रानी नचियार ने अपने पति के राज्य को फिर से ले लिया। प्रिय मित्रों, रानी नचियार की इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि महिलाएं हमेशा से ही सशक्त रही हैं और उनका हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में कितना अहम योगदान है। धन्यवाद।
2: आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या

जान ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि

जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: आई एम श्योर हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों की प्यारी प्यारी सी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंडिपेंडेंस डे वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, हमारे लिए बहुत गर्वान्वित होने वाली बात है और हम सभी मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों के साथ इसे सेलिब्रेट करने का अपना ही मजा है। आप सभी को गोल्ड परिवार की ओर से आकाशवाणी दिल्ली की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। इसी के साथ मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत और साथ ही विदा लेना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे से रेडियो किड्स।
1: बाय,
0: गुड बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें।

अभी हमारे नन्हे मुन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जो कि आधारित है स्वांग।

台免费的微信盘上播放的全印度电台的世界广播。听众朋友们，请收听本地拉比圣格坦的一个古典音乐节，请你们享受。

पांग के बिन चीज लाया वो मैं पोसूं करसान छांग द कुछ लाते पांग द मिंची इन कर छु छिंग नी मन छांग शो।

이주 방금 본 칭지쇼쇼 팅통이 부대닝 더 카르틱 창다 이쇼 거추 칭디문 샹쇼

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, मैं अभिनव कुमार झा
2: और मेरा नाम है दर्पण त्रिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरें सुनाते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जिंदगी में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी। आज युवा शक्ति की बात करेंगे। युवा होने की एक खूबसूरत बात है, गिरने के बाद भी अगली कोशिश के लिए उत्साह बचा रहता है। हार सामने आती है तो निराशा होती है, लेकिन उसी हार के बाद फिर मैदान में उतरने का हौसला भी मिलता है।
1: खेलों में उभरते युवा खिलाड़ी यही दिखाते हैं। आज का झटका उन्हें कल की कोशिश से रोकता नहीं, बल्कि हर बार कुछ सीखकर लौटने की भूख बढ़ाता है। जिंदगी में भी हर असफलता का मतलब रुक जाना नहीं होता। कभी परीक्षा उम्मीद के मुताबिक नहीं जाती, कभी पहली कोशिश नाकाम होती है, कभी रास्ता बदलना पड़ता है, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत बची रहे तो वापसी हमेशा संभव है।
2: और यही भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में कर दिखा रहे हैं और आज के कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे हम बैडमिंटन की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में और तमाम खेल खबरों से रूबरू कराएंगे। बैडमिंटन की दुनिया में अस्मिता चलिहा ने कमाल किया है। 2024 के कोरियन मास्टर्स में खेलते हुए वो चोटिल हो गई थी और बैसाखी के सहारे मैदान से बाहर आई थी और वापस इंडिया आई थी। आज उसी कुरियन मास्टर्स में उन्होंने खिताबी खेल दिखाया, खिताबी प्रदर्शन दिखाया और खिताब को अपने नाम किया है। साथ ही साथ हम बात करें क्रिकेट के जगत की, तो भारतीय टीम युवा चेहरों के साथ तैयार हो रही है आने वाली श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के लिए। आप जानते ही हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हाल ही में परिणाम उस तरह के नहीं रहे जितने T20 में या एक दिवसीय क्रिकेट में रहे हैं, तो एक नई चुनौती का आगाज होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। साथ के साथ DPL यानी दिल्ली प्रीमियर लीग में युवा चेहरे लगातार इस नए मंच पर अपनी साख बिखेर रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे, उनकी चमक जो दिख रही है रोज उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ड्यूरेंट कप में क्या चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। Under-20 एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भारतीय युवा एथलीट्स लगातार भारत का परचम लहरा रहे हैं, तो इन सभी चीजों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हॉकी से, क्योंकि हॉकी का विश्व कप शुरू होने में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। तो आइए हॉकी विश्व

0: वो मंच, वो माध्यम जो हर दौर में भारत के इतिहास का साक्षी रहा है। आइए उसी इतिहास के एक सुनहरे अध्याय की कुछ झलकियां दोबारा जीते हैं।
1: वहाँ पे वो चौकन है, वहाँ पे अब्बास अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिवेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
0: कॉमेंट्री में बोले गए जसदेव सिंह के ये शब्द महज शब्द नहीं रहे, एक सुनहरी याद बन गए, एक अविस्मरणीय कहानी बन गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई है और आगे भी सुनाई जाएगी। आजादी के महज 28वें वर्ष में भारत हॉकी की दुनिया का विश्व चैंपियन बन गया था। अशोक कुमार के गोल के चलते मलेशिया के कुआलालंपुर में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को फाइनल में मात दी थी।
2: कहने को तो हॉकी महज एक खेल है, लेकिन जिस दौर में भारत अपनी अलग पहचान तलाश रहा था, उस दौर में भी हॉकी ने ही दुनिया में भारत की पहचान लिखी। गुलामी के दौर में देश की आवाज दबाई जा रही थी, लेकिन हॉकी की गूंज दुनिया तक पहुँच रही थी। जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन था, तब भी भारत ने ओलंपिक में एक के बाद एक गोल्ड मेडल जीत पूरी दुनिया में अलग छाप छोड़ी।
0: लेकिन बीच में कुछ वर्षों के लिए हॉकी के विश्व में बनाई गई भारत की वो साख, वो पहचान कहीं खो गई थी। हालांकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीत और फिर पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में वो प्रदर्शन दोहराने के बाद भारत ने वो ख्याति एक बार फिर हासिल की और अब वैसा ही कुछ 15 अगस्त से नेदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में करने की सोच लेकर भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी। ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने वाले कोच क्रेग फुल्टन और कप्तान हरमनप्रीत सिंह की पुरुष टीम से तो उम्मीदें हैं ही, लेकिन सामान्तर तौर पर महिलाओं का विश्व कप भी खेला जाएगा और वहां भी अपेक्षाएं कुछ कम नहीं। आइए आज महिला टीम की उम्मीदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
2: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारतीय महिला टीम का सफर किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर सा रहा है, उतार चढ़ाव से लबरेज।
0: 2021 के ओलंपिक्स में जहां पदक आते आते रह गया, तो वहीं 2023 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2025 की FIH प्रो लीग में जहां आखिरी पायदान हासिल हुआ, तो वहीं इस वर्ष FIH नेशंस कप में सभी मुकाबले जीत ट्रॉफी पर कब्जा किया।
2: लेकिन विश्व कप की चुनौती और ज्यादा कड़ी होने वाली है और इस बात को भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान और द्रोणाचार्य अवार्डी प्रीतम सिवाच भी मानती हैं।
3: देखो, जब हम नेशन कप खेलते हैं या प्रो लीग खेलते हैं या टेस्ट सीरीज खेलते हैं, उसमें बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ना तो प्रेशर होता है ना कॉम्पिटिशन इतना बड़ा होता है, क्योंकि जो टीमें होती है उसमें नए पुराने खिलाड़ी ट्राई करते हैं सब, तो उसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं होता। लेकिन जब मेजर कॉम्पिटिशन आता है, जब वर्ल्ड कप होता है या ओलंपिक होता है या ऐसे कॉम्पिटिशन होते, सब अपना 100% लेके आते हैं और अच्छे से अच्छी टीम बना के लेके आते हैं, तो इसमें तो डिफरेंट बिल्कुल अलग है। और हमारी टीम को भी उसी उससे खेलना है कि भाई हमारी टीम भी अब सबसे टॉप की टीम बनी हुई है और उसी लेवल पे जाके खेलना कि हमें वर्ल्ड कप की जो चार में पहुंचना है। तो हर लड़की का, हर कोच का, हर स्टाफ का, हर प्लेयर का, मतलब जो सोच लेवल है ना, जो सोच है वो एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमें पोडियम पे फिनिश करना और हमें 100% देना, क्योंकि ये 4 साल के बाद होता है और इतनी मेहनत की होती है, सारा रिजल्ट यही दिखाना।
0: जी हाँ, प्रीतम सिवाच का कहना है कि टॉप 4 में आने का दमखम रखती है ये भारतीय टीम।
3: बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा मुझे कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो है बेस्ट 4 में आ सकती है, जो टॉप 4 है उसमें आ सकती है। गेम का स्ट्रक्चर, प्लानिंग, पीसी सब ऑल ओवर अच्छा है, कोच की प्लानिंग भी ठीक है।
0: जी हाँ, खिलाड़ियों के अलावा कोच एक अहम कड़ी है। भारतीय महिला टीम के मौजूदा कोच है नेदरलैंड से आने वाले श्योट मघाइने। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में जब भारतीय टीम ने 4th स्थान हासिल कर अपना जॉइंट बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया, तो वो इन्हीं जनाब के प्रशिक्षण में, और इसलिए इस बार भी उम्मीदें पुरजोर हैं। हालांकि 2022 और 2018 में महिला टीम विश्व कप में पूल स्टेज में एक भी मुकाबला जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। वो अलग बात है कि क्रॉसओवर में जा अच्छा प्रदर्शन कर 2022 में 9वां स्थान, तो 2018 में तो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश भी पाया था। लेकिन क्या 2026 में श्योट मघाइने के प्रशिक्षण में प्रदर्शन बेहतर होगा?
3: देखो, नेदरलैंड से वो आए हैं और नेदरलैंड की टीम से चलो मैं बाद में खेलना, यूरोप की टीमें सब एक जैसा खेलती हैं, जैसे लाइक बेल्जियम है, न्यूजीलैंड है, ये सब एक जैसा स्ट्रक्चर, तो जिसे हमें आइडिया हो जाएगा और ये पहले भी ओलंपिक में टीम के साथ काम कर चुका है, उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता कि

0: काफी हेल्प मिलेगी और मिलनी भी चाहिए।
1: यूं तो भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का अच्छा मिश्रण है, लेकिन प्रीतम सिवाच का मानना है कि विश्व कप जैसे मंच पर दारोमदार तजुर्बेदार खिलाड़ियों पर होगा।
0: देखो जैसे स्ट्राइकर है तो प्लेयर चलते रहते हैं, चेंज भी हो देते हैं। अब इस टाइम उसको नहीं देखते, हम इसको देख रहे हैं कि इस टाइम पीक पे कौन है, जैसे कि लाइक नेहा, नवनीत और बैक में जाके सुशीला चानू मोस्ट सीनियर प्लेयर है, जैसे लाइक सविता गोलकीपर जो है कि कैप्टन भी रह चुकी है, सलीमा टेटे, ये सभी मोस्ट सीनियर प्लेयर है। उनको सीनियर के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। इनको जूनियर लड़कियां जो आई है उनको अपने साथ लेके चलना है ना, पूरी टीम को मोटिवेट करने करके चलना है, क्योंकि ये लोग अच्छे हैवी टूर्नामेंट खेल चुके हैं, पिछले ओलंपिक भी खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। जैसे अपनी दीपिका ड्रैग फ्लिकर है, जबकि वो थोड़ा इंजरी भी है उसको इस टाइम, लेकिन फिर भी टीम के लिए वो ड्रैग जरूर मारे, क्योंकि पीछे जो टूर्नामेंट हम जीत के आए हैं उसकी सपोर्ट से ही जीत के आए। तो ये जो पांच छह प्लेयर हैं इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे देश का वो है, लेकिन उसको प्रेशर में ना ले, टीम के लिए स्पोर्ट में खेले, एक दूसरे से मिलके खेले, एक दूसरे बात करके खेले, है ना, एक दूसरे की गलतियां जो है उसको कवर अप करे, इससे हमारी टीम ज्यादा बेहतर जा पाएगी। कई लड़कियां नहीं है तो उनको भी साथ में लेके चलो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, प्रो लीग में खेल चुकी है, तो मुझे लगता नहीं है टीम में कहीं कमी है। ऑल प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन तीन चार प्लेयर सीनियर है, उनको साथ में जूनियर्स को लेके चलना।
2: भारत के पूल में इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही के वर्षों में अपने खेल के स्तर को पहले से बहुत बेहतर कर चुकी चीन की टीम है, यानी हर मैच में कड़ी चुनौती है, लेकिन अगर विश्व चैंपियन बनना है तो फिर किसी भी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं ले सकते,
0: किसी भी टीम को कमजोर नहीं लेना, तीनों ही टीमें अच्छी हैं। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं साउथ अफ्रीका टीम एक ऐसी है जिसपे हम गोल एवरेज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2010 में हम साउथ अफ्रीका से भी हारे थे जब कॉमनवेल्थ गेम्स था, और तीन गोल से शायद आई थिंक दो या तीन गोल से हारे थे, जो कि वो टीम हमें वो मैच हमें जीतना बहुत जरूरी था। तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई सी टीम कमजोर नहीं है, सब टीमें अच्छी हैं।
2: भारतीय हॉकी के लिए एक स्तंभ रही प्रीतम सिवाच के लिए शायद आने वाला विश्व कप और भी ज्यादा खास है, क्योंकि एक तरफ महिला टीम में जहां उनकी शिष्या खेलते हुए नजर आएंगी, तो वहीं पुरुष टीम में उनके सुपुत्र यशदीप सिवाच भारत की जर्सी पहन मैदान में उतरेंगे, और हर एक भारतीय फैन की तरह वो भी चाहती हैं दोनों ही टीमों को पोडियम पर देखना।
0: जब हमारी टीम ओलंपिक में मेडल ला सकती है मैन की, तो इसमें भी ला सकते हैं वर्ल्ड कप में। और पीछे आप देखेंगे प्रो लीग के टाइम जो पहले मैचेस खेले थे उसमें हारे थे जब इंडिया में, उसके बाद हम लोगों ने इम्प्रूव किया, हमने इंग्लैंड से हारे भी है और हराया भी है, हॉलैंड टीम से हारे भी थे हराया भी था प्रो लीग में, तो मतलब नेक टू नेक फाइट है, ऐसा नहीं है कोई टीम कमजोर है या हम किसी से कमजोर है। तो मेन टीम को मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई वो अच्छा खेले और मेडल लेके आए, 75 का वर्ल्ड कप का जो रिकॉर्ड है उसके साथ अब कंटिन्यू करें, उसको ब्रेक करके दोबारा से गोल्ड लाएं। और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके रेडियो के माध्यम से, उसमें मेरा बेटा भी खेल रहा है यशदीप सिवाच, और मुझे बड़ा वो लगता है कि भाई हमारी मेन विमेन दोनों ही टीमें खेल के आए और मेडल लेके आए, क्योंकि विमेन्स में जो है मेरी पांच लड़कियां, मेरी पांच स्टूडेंट मेरी अकेडमी की खेल रही उसकी, तो मेन विमेन दोनों को गुड विशेस देना चाहूंगी और ओलंपिक में मेडल लेके आए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, पूरे देश को अच्छा लगेगा,
2: और आकाशवाणी एक बार फिर साक्षी बनेगा हॉकी के विश्व कप का। तो सुनते रहिए और भारतीय टीम का समर्थन करते रहिए।
1: आज रविवार है, यानी संडेज ऑन साइकिल का दिन, फिटनेस का दिन। तो आइए सुनते हैं संडेज ऑन साइकिल के आज के संस्करण पर हमारी सहयोगी अमीषा पटेल की रिपोर्ट, और उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा होगी अस्मिता चालिया के BWF कोरियन मास्टर्स की जीत पर।
3: इंडिया। दो शब्द लेकिन एक बड़े और स्वस्थ भारत का सपना, इसी संदेश के साथ दिल्ली में आयोजित हुआ संडेज ऑन साइकिल का 85वां संस्करण। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बाहर लोगों का उत्साह अपने चरम पर था, सैकड़ों लोग साइकिल लेके पहुंचे थे, लेकिन इस बार मंजिल सिर्फ फिटनेस नहीं थी, इस बार इस राइड के साथ जुड़ा था एक बड़ा संदेश जो था नशा मुक्त भारत। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया की पहल संडेज ऑन साइकिल के 85वें संस्करण में दिल्ली के लोगों ने फिटनेस के साथ नशा मुक्ति का भी संदेश दिया। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए अभिनेता सिद्धार्थ निगम भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिटनेस और डिसिप्लिन आज की युवा पीढ़ी के लिए क्यों जरूरी है।
4: ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है संडेज ऑन साइकिल, और अच्छी बात यह है कि 85th एडिशन है, और इस तरह एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना ये अपने में बहुत बड़ी काबिल तारीफ।

आज मैं इस 85th एडिशन का हिस्सा बना हूँ. और ऑनेस्टली जब मैं सुबह आया था तो आई वॉज लिटिल स्लीपी, बट बाई सींग द एनर्जीज एंड एवरीथिंग, इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, इतने सब एक्साइटेड थे, खुश थे. आज साइकिलिंग करके बहुत मजा आया. सो ये बहुत अच्छी मुहिम है टू प्रमोट फिटनेस, टू टेल पीपल दैट फिटनेस कितनी जरूरी चीज है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए. और आई थिंक इस तरह के इनिशिएटिव्स

0: करना चाहेंगे कि जैसे आज का हमारा थीम भी है नशा मुक्त भारत, तो ये जो डांसिंग है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये कैसे यूथ के लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है जिससे ये इन सब गलत आदतों से दूर रह सके?
1: वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। वैसे ही जब आप अपने आप को नहीं समझते हैं कि आपका शरीर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जब तक आप अपने शरीर को एक एसेट की तरह नहीं देखते, क्योंकि आपका शरीर एक एसेट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका शरीर है और सदैव आपके साथ रहेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है शरीर का ख्याल रखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है शरीर को जितना खुश रख सकते हैं, जितना फिट रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जिम्नास्टिक में कहूंगा कि जाओ जिम्नास्टिक्स करो, आपको बस कोशिश करनी है, उठना है, योगा करना है, रनिंग करना है, वॉकिंग करना है, स्किपिंग्स करना है, ये सारी चीजें भी अगर आप करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, वो भी बहुत इनफ है। बट फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। फॉर सॉर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो मुहिम शुरू करी बाय कॉलिंग एवरीबॉडी यू नो डूइंग दिस थिंग, वैसे मुझे लगता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज करना चाहिए और फिटनेस को भी प्रमोट करना चाहिए। आकाशवाणी के माध्यम से मैं सारे यूथ को बस यही बोलना चाहूंगा कि नशे से दूर रहो एंड से यस टू फिटनेस, बिकॉज ऐसा कोई नशा मत करो जो आपके शरीर को बेकार बना दे।

0: तो बीन का लहरा सुन रहे थे भाई, महेंद्र नाथ और उनके साथी की आवाज में की बजाई हुई धुन।
1: जी, और
0: और
1: बिल्कुल
0: अब
1: निरंकार भाई, बिल्कुल बचपन याद आ गया इसको सुनने के बाद। गांव में सपेरे आते थे और जिस तरह इस धुन को बजाते थे, गांव में कहीं भी कोई बच्चा हो वो तो जाते थे, गांव में जितने भर लोग थे अपने अपने कामों को छोड़कर इस संगीत को सुनकर वो वहां पे पहुंच जाते थे।
0: बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी धुन सुनी हमने अपनी अपने साथियों के पसंद पर। और अब जो है सावन का गीत वीणा ढिल्लोर और उनकी सखियों की आवाज़ में, और सुनने वाले हैं गांव सूप जिला बागपत से कृष्ण कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, मदन मोहन, अश्वनी, आशीष, अभिषेक, क्षितिन, लक्ष्य, नेहा, निकिता और

0: श्रेयांश
1: और इसी क्रम में एक और फरमाइश, बटिना रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की।
0: गांव बधेव जिला शामली से डॉक्टर सहेंद्र पाल शर्मा, हरेंद्र शर्मा, बबीता शर्मा और आशुतोष शर्मा। रठोड़ा जिला बागपत से पुष्पेंद्र शर्मा, रीता शर्मा, अनमोल और खुशी शर्मा। पपरावट दिल्ली से भाई नफे सिंह मुदगल और रूपमती मुदगल।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट की। साथ ही में एक और फरमाइश हमारे तक पहुंची है गांव लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापति, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: तो सुन लेते हैं ये गीत।
1: बिल्कुल।

0: वीना ढिल्लो और उनकी सखियों के बाद अब एक सावन का गीत सुनेंगे भाइयों की पसंद पर ब्रह्मपाल नागर की आवाज में। और
1: और इसके
0: चिट्ठियां
1: लिए जो
0: हैं
1: फरमाइश निरंकार भाई आई है करावल नगर दिल्ली से, रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन जी। अगली फरमाइश गांव ग्वाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के सदस्यों की। अगली फरमाइश इसी क्रम में हमारे पास पहुंची है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, दुबिया निवेदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, आकसा अदीब, नाजिया आफिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, गुरशब्द सिंह, राहुल और इनका परिवार। ये हैं गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज और इनका परिवार। चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। और ये हैं रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़।
1: अगली फरमाइश बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल दिवांगन, कौशल्या दिवांगन, हिमलता और उनके परिवार के बाकी सदस्य।
0: ग्राम पंजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंदोलिया, आदर्श सार्थक, आलोक चंदोलिया। और यह बिहार डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, बेगम शबनम बानो और इनका परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और ये हैं रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से किलेश कुमार साहू, चित्रसेखा और इनका परिवार। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और इनका परिवार। साले भाटा मासून छत्तीसगढ़ से जीत ध्रुव केवल और इनका परिवार।
1: वहीं अगली फरमाइश नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और उनके परिवार के सदस्यों
0: तो
1: की।
0: सुनते हैं ये सावन का गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुडुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना

0: दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाई सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: भाई हेमंत भाई
1: जी,
0: आज कल हम देख रहे हैं कि बारिश की आंख में चोली चल रही है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है, और बारिश का ही मौसम है ज़्यादातर। जो इस समय हमें अपनी फसलों को ये ध्यान रखना है कि पानी की निकासी का प्रबंध ज़रूर करें अगर कहीं पे पानी भरता है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां भी इस समय हैं, ज़्यादा नुकसान उनको हो सकता है, और धान की फसल भी है उसमें पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो भी धान को नुकसान कर सकता है। पानी की निकासी का प्रबंध ज़रूर रखें ताकि जो हवा का आवागमन उनकी जड़ों में है वो भी हो सके। इसके साथ साथ जो इस मौसम के हिसाब से कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि धान की हमारी मुख्य फसल इस समय है, अगर उसमें पौधों का रंग पीला पड़ गया हो तो समझ सकते हैं कि जिंक की कमी हो सकती है, और इसके लिए 6 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं आप जिंक सल्फेट की, और इसे 300 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हम जानते हैं कि चाहे कोई सी भी फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे आपकी ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का है, या दाल वाली फसल है, सब में बड़ी मात्रा में खरपतवार हमारे खेतों में आ जाते हैं। तो खरपतवारों का नियंत्रण लगातार रखें, क्योंकि खरपतवार न केवल हमारे दूसरी फसलों के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं बल्कि नमी को भी सोखते हैं और कई रोगों के वाहक भी होते हैं, इसीलिए इनका नियंत्रण जरूरी है। और कोशिश करें कि बारिश का मौसम है, हाथ से उखाड़ के अगर उनको निकालें तो अच्छा है, रसायनों का प्रयोग ना करना पड़े। और जो ज्वार बाजरा उसकी बिजाई का समय इस समय है, जिन किसान भाइयों के अभी बिजाई की जगह है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनकी जो रोपाई है उनका भी समय है। अगेती फूल गोभी की पौध अगर तैयार हो गई है तो उसे भी, अगस्त का महीना आ गया है, उसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जुलाई से ही शुरू कर देते हैं हमारे भाई,
1: तो और वही किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का बार बार कह रहे हैं कि जल निकास का जो है उचित प्रबंध करें किसान भाई।
0: बिल्कुल। और स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जो है ये मक्का की ही किस्में हैं, और इनको आप लगा सकते हैं, इस समय अच्छी आपको आमदनी मिलती है। अगर स्वीट कॉर्न की बात करें तो माधुरी है, बिन ऑरेंज है, और बेबी कॉर्न की HM4 किस्म को आप इस समय चुन सकते हैं। और बहुत ज़रूरी बात हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, जो कद्दू वर्गीय है, जितनी भी सब्जियां हैं ना, उनमें परागण के लिए बहुत ज़रूरी होता है मधुमक्खियों का होना, इसलिए मधुमक्खी पालन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मधुमक्खी आपके परागण में बहुत मदद करती हैं। और इसके साथ साथ आप अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यान में जो फूल हैं उनकी किस्में लगा सकते हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी बात इस समय जो है, जैसे कि गेंदे की अगर हम बात करें, गेंदा इन दिनों में काफ़ी आता है, तो गेंदे में आपको ध्यान ये रखना है कि गेंदे की उन किस्मों को शामिल करना है जो इस मौसम की किस्में हैं। भाई गलती कर देते हैं कई बार कि अगर जाड़े में होने वाले गेंदे को इस समय लगा देंगे तो उससे फूल नहीं ले पाएंगे। इस समय का जो गेंदा है उसकी बिजाई करें। और अब बात ये आएगी कि

0: कौन सा गेंदा लगा जाना चाहिए? तो पूसा नारंगी किस्म इस समय हमारे भाई लगा सकते हैं और पौध तैयार करें, उसके बाद उसकी रोपाई करें, वो अच्छे से चलेगी। और जो फल हैं उनमें बहुत अच्छा मौसम है बागानों को चलाने के लिए,
1: जी
0: चाहे आम है, नींबू है, अमरूद है, कोई भी इस समय जो फल वाले पेड़ हैं उनको लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे चलेंगे। और ये देखें कि एक तो भरोसे की जगह से आपको किस्म को लेना है, कलमी लेना है, और उसके साथ साथ उसमें ये देखना है कि पानी की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है तो निकासी का प्रबंध ज़रूर होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी अगर आ जाता है।
1: और एक एक चीज़ और निरंकर भाई देखी गई है कि जैसे किसान भाई हमारे गमले लगाते हैं या आप, तो गमले में क्या नीचे जो छेद है वो नहीं करते, क्या होता अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से जो जड़ें जो हैं गल जाती हैं, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना कि गमले के अंदर एक छेद भी रखना है ताकि अत्यधिक जो पानी है वो रिसता रहे और निकलता रहे उसमें से।
0: हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा भी पौधों में बहुत सारी बीमारियां लाने का भी काम करती हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई इस समय जितने भी फूल हैं उनको भी ध्यान रखना है, बारिश हो रही है लगातार और पौधे नाजुक होते हैं, उनमें भी निकासी का प्रबंध ज़रूर रखना है। और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, कई जगह ऐसी है कि बारिश कम है, तो वहाँ पर हल्की सिंचाई उसमें करते रहना है, जिससे कि वो पौधे ठीक से चल सकें। सब्जियों को, फूलों को, ख़ास तौर पर बेल वाली इस समय सब्जियां होती हैं, बार बार यही हम कहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि जहां बारिश ज़्यादा होती है तो पानी की निकासी का प्रबंध वहां पर
1: जी
0: ज़रूर होना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते हैं, हम कुछ जनरल बातें भी कई बार अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि इस समय चाहे वो नए फल वृक्ष लगा रहे हैं या कोई किस्म बो रहे हैं, कोई सब्जी लगा रहे हैं, उसमें भरोसे की जगह से पौधे लेने हैं। और बागवानी की वाली फसलों पर हम खास तौर पर कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मिसाल के तौर पर आप आम लगाना चाहते हैं और आपने दशहरी चुना है, लेकिन वहाँ पर वो कोई देसी वैरायटी आपको मिल गई, तो फिर वो कई साल बाद आपको पता लगेगा कि ये किस्म क्या है और वो फिर किसानों को नुकसान हो सकता है। इसलिए
1: जी
0: भरोसे की जगह से ही पौधे खरीदना है, ताकि जो आप लगाना चाहते हैं किस्म उसी को ही आप ले पाएं।
1: बिल्कुल
0: और अब देखो सावन का महीना चल रहा है हेमंत भाई, कई भाई कावड़ लेने गए हुए हैं, भगवान शिव के भजन लगातार चल रहे हैं
1: जी
0: और शिव की वंदना में सब शामिल हैं, तो क्यों ना सुन लें एक बम लहरी।
1: हाँ, सुभाष
0: और
1: नाथ और साथियों की आवाज़ में, और इसके लिए फरमाइश भी हमारे पास आई है निरंकार भाई जी।
0: नाम पढ़ देते हैं जो बचे हैं सारे।
1: बिल्कुल, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश आई है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवा मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश हमारे तक पहुंची है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्वय गजभिये की। इसी क्रम में अगली फरमाइश बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, ये हैं। हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और इनका परिवार, ये हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक और ये हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नीरीन अंसारी और इनका परिवार, ये हैं। दादा बाबू रोड गिरडी, झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार।
1: अगली फरमाइश ब्रज बिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से करमबीर सिंह ढिलौड़ और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जो हम तक आई है छत्तीसगढ़ से आई है, ये देवशंकर तामूरिया, जयदेव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और ये हैं। संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत सानी, ये हैं गोराया जालंधर से।
1: वहीं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनव गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा की फरमाइश भी हम तक आई है। इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है हमारे पास, ये आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और इनका परिवार। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, बठेना पाटन जिला से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा और इनका परिवार।
1: खैल बाजार पानीपत से नरेश

0: मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डिग्गू सिक्का और उनके परिवार के सदस्य। इसी क्रम में अगली फरमाइश, गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला कार्तिक और वेदांश जांगड़ा,
1: गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, और यह गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश और युवत कड़वासरा।
0: अगली फरमाइश आई, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश, संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। एक और फरमाइश, निरंकर भाई हम तक आइए, गांव लोहगढ़ ठोकरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: तो सुनते हैं ये बमलहरी सुभाष नाथ और उनके साथी से।

0: जय बम भोले की।
1: जय बम भोले।
0: तो बहुत बढ़िया बम लहरी सुनी हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने। और देखिए, भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा में ही मान जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अब जो हम देख रहे हैं सड़कों पर, हरिद्वार से लोग कांवड़ ला रहे हैं और सब बाबा की धुन में मस्त हैं।
1: जी।
0: और अब चलते चलते मौसम की जानकारी दे दें, अगले 48 घंटों में दिल्ली और उसके आसपास मौसम सुहावना रहने की संभावना।

0: है। मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है दिल्ली के आसपास के इलाकों में, और ऐसे में हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अगर जल भराव की स्थिति होती है तो निकासी का प्रबंध जरूर करना है, और ठंडी हवाएं और बादल बने रहेंगे पूरे समय परसों तक, ये मौसम विभाग की तरफ से सूचना है।
1: तो शंकर भाई, समय हो चुका है कार्यक्रम समापन की तरफ, और घड़ी की सुइयां कर रही हैं इशारा कि हमें जल्दी से अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए।
0: तो
1: तो
0: सभी
1: कार्यक्रम
0: बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर।
1: संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम। आरंभ करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरटीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पापा ये सब?
6: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
5: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी।
6: अरे ये कैसे रह गया?
5: पैसे गए?
6: नहीं नहीं नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सही कह रहा है।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: ये अभियान हर घर तिरंगा पहल का पांचवा वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से ये देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस वर्ष अभियान ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष बल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत सभी

0: मंडलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाव से तिलकनगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
1: 15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
2: CAG रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आती 24 रिपोर्ट आ चुकी। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई इसमें भी 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं CAG ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी है।
0: श्री सिंह ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, GST पंजीकरण, ई-वे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। DMRC ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए DMRC को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोतीनगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
4: कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया।

0: और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिन भर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड

0: होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर जय सिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर नवोदिता शर्मा।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को, डॉक्टर निवेदिता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन का महीना आ चुका है, कांवड़ी कांवड़ लेकर शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने निकल चुके हैं। राहें बम बम भोले के स्वरों से गूंज रही हैं। वही हमारे गौरव का दिन स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसा लगता है पूरा वातावरण ही आध्यात्म और देशभक्ति के भावों से भर गया है। आकाश में काले काले मेघ जैसे देश प्रेम और आध्यात्म का संदेश ला रहे हैं। माटी से सौंधी सुगंध उठ रही है, वर्षा की रिमझिम बूंदें बम भोले के स्वरों में अपना संगीत मिला रही हैं। ऐसे सुहाने मौसम में हम लेकर आए हैं खूबसूरत गजलों और शानदार कविताओं का ये सुंदर सा कार्यक्रम, जहाँ भाव हैं, संवेदनाएं हैं, स्वर हैं। आज की काव्य गोष्ठी सावन की फुहारों जैसी है, जहाँ शब्द बरसेंगे, भाव महकेंगे और रस की वर्षा होगी। वक्त के पाव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। डूबकर हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता, कान से होके हौले से दिल में उतर आएंगे। आज हमारे बीच देश के जाने माने गीतकार और गजलकार उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच जो उपस्थित हैं आदरणीय अशोक सम्राट जी, जो भारत सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी हैं, हिंदी अकादमी दिल्ली से 2 बार नवोदित लेखक सम्मान, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान जैसे अनेक सम्मान उनको मिल चुके हैं और अब तक उनकी लगभग 10 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के विभिन्न राज्यों में उनके कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो आइए उनको सुनते हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ इन 4 पंक्तियों के द्वारा। प्यार का रंग नहीं मगर आता है, दिल से उठता हर शब्द बोल जाता है, तर्क के पर्दे चाहे लाख इस पे डालो भी रंग चाहत का चेहरे पे नजर आता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अशोक सम्राट जी का।
3: धन्यवाद मैडम। और मैं सीधे सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। कविता क्या, ये एक गीत है एक सजनी का अपने सजना के लिए। एक सजना उनके जो सुरक्षा में तैनात हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में सजनी उनको याद कर रही है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो।
2: स्वागत है।
3: कि जब से दूर गए हो मुझसे मन में

0: आए, सभी एक से लगते हैं अब मुझको संध्या भोर। कब आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित
1: वाह
0: चोर,
1: वाह, बहुत सुंदर।
0: जब से दूर गए हो मुझसे। चारों तरफ है हरियाली पर मन में मेरे उदासी, हर दम राह देखती है ये मेरी।

0: चित चोर,
1: बहुत सुंदर,
0: जब
1: बहुत
0: से
1: सुंदर,
0: दूर गए हो मुझसे,
2: क्या बात है।
0: कैसे तुमको मैं बतलाऊं, वक्त बिताऊं कैसे, तुम बिन साजन मैं कोई त्यों

0: नथनी करूं मैं किस पर गौर, कब आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित चोर।
1: वाह
0: जब
1: वाह
0: से
1: वाह।
0: दूर गए हो मुझसे, जब भी जाऊं पनघट पर तो होती हैं ये बतियां। कब आएगा साजन तेरा पूछे सारी सखियां, होगा कब ये मिलन हमारा, बने क्यों हम दो छोर।
1: वाह
0: कब
1: वाह
0: आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित
1: वाह
0: चोर,
1: वाह, बहुत
0: जब
1: सुंदर।
0: से दूर गए हो मुझसे
1: क्या बात
0: मन
1: है,
0: में उठे
1: क्या बात
0: हिलोर।
1: है, वाह वाह,
0: कब आओगे मुझे बताओ ओ
1: ओह
0: मेरे चित
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: चोर।
1: सुंदर,
0: वाह
1: बहुत
0: वाह बहुत बहुत
1: सुंदर, वाह
0: धन्यवाद।
1: वाह वाह
0: क्या
1: वाह।
0: कहने, एक छोटी सी गजल पेश है कि उनको हम इतने जाने पहचाने लगे, वो हमें बातें दिल की बताने लगे, और पल में ही आज वो बात वो कह गए जिसको कहने में हमको जमाने लगे।
1: जमाने लगे। वाह
0: और
1: वाह वाह
0: आज
1: वाह।
0: उनको न जाने है क्या हो गया, वो कभी भी ना इतने दीवाने लगे, अपने दिल का बयां हाल मैं क्या करूं, मेरे सपनों में वो आने जाने लगे।
1: वाह वाह वाह
0: और
1: वाह।
0: प्यार का उनके अंदाज तो देख लो, अब तो वो मेरी कस्में भी खाने लगे।
1: अरे वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह वाह।
0: एक छोटी सी गजल और है कि बात मेरी अगर सुनी होती, खत्म ऐसे न दोस्ती होती,
1: वाह वाह।
0: हम किसी और के नहीं होते, तुम किसी और की नहीं होती।
1: वाह
0: और
1: वाह।
0: काश मैं ही अगर गलत होता, काश तुम ही अगर सही होती, और टूटता ना भरोसा तो फिर ये कुछ और जिंदगी होती,
1: वाह
0: और
1: वाह।
0: भूल सम्राट जाओ बातों को, ऐसी बातें कहाँ नहीं होती।
1: अरे वाह वाह
0: क्या
1: वाह वाह
0: बात है,
1: वाह।
0: क्या बात है, वाह वाह। एक छोटी सी गजल और पेश है, इसी बहर में है कि मैंने दुनियादारी देखी, घूम घूम कर सारी देखी, कुछ मतलब के यार भी देखे, कुछ में जिम्मेदारी देखी,
1: वाह।
0: और संबंधों की ताकत अक्सर देकर रकम उधारी देखी, नर को देखा पड़ा नशे में, बोझ उठाती नारी देखी, आग लगेगी अंदेशा है, उठती एक चिंगारी देखी, और यूं ही पसरा मौन नहीं है, इसमें एक लाचारी देखी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: वाह
1: बहुत
0: वाह वाह,
1: सुंदर,
0: बहुत
1: बहुत
0: सही गजल, वाह
1: सुंदर
0: वाह वाह,
1: गजल,
0: क्या कहने।
1: बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय अशोक सम्राट जी की, जैसा नाम है उनका सम्राट, वैसे ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने आज हमको सुनाया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुर स्वरों की मलिका सरिता जैन जी को, जिन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपनी गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। गजल महज दो मिसरों का सिलसिला नहीं होती, ये खामोश दिल की जुबां होती है। सरिता जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। दिल ने जिनको रचा भाव से प्रीत के स्वर रखे मिलेंगे, सबके मन पर लिखे हमारे ढाई अक्षर रखे मिलेंगे।
0: वाह,
1: आज गढ़ा है हमने खुद को रेशम जैसे एहसासों से, कल बनकर गीत प्यार के अधर अधर पर रखे मिलेंगे, अधर अधर पर रखे
0: क्या
1: मिलेंगे।
0: बात,
1: बहुत बहुत स्वागत सरिता जी।
0: स्वागत
1: बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी। मैं एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज करती हूँ कि दिल का दरिया कटाव करता रहा, दिल का दरिया कटाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, वाह।
0: इश्क सीने में घाव करता रहा। और एक ताजिर से हो गया था इश्क, व्यापारी से, एक ताजिर से हो गया था इश्क, उम्र भर मोल भाव करता
1: वाह
0: रहा,
1: वाह
0: क्या बात है
1: वाह।
0: भाई। उम्र भर मोल भाव करता रहा। कि जैसे अब इश्क के जो पैमाने हैं वो बदल गए हैं, एक जमाना था कि इश्क के विरह में रोया जाता था, अब नए पैमाने गढ़े गए हैं। तब मैं चार मिसरे कहती हूँ कि बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क,
1: वाह वाह।
0: अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क, और लैला के हिस्से आती हैं रुसवाइयां।

0: लैला के हिस्से आती हैं रुसवाइयां तमाम, मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क, कि मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क। इसी सिलसिले में देखिएगा कि तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा, अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा, और कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद, और अंधेरा जिद पे है अपनी तो वो इतना करे, अंधेरा जिद पे है अगर अपनी तो वो इतना करे, बुझाए मेरे चरागों को आफ्ताब के बाद, बुझाए मेरे चरागों को आफ्ताब के बाद, और उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद, और हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद। और कुछ शेर और देखिए कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है, और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है।
1: वाह वाह वाह।
0: और तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है, यही बुत हमारा तराशा हुआ है, और नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, मतलब नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से, और पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी से, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी से। एक गजल के चंद शेर देखिए कि सर से पाँव तक एक उदासी छाई है तन्हाई है, सर से पाँव तक एक उदासी छाई है तन्हाई है, बिनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है, बिनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है, और जाने क्या था जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, जाने क्या था जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है,
1: वाह वाह वाह,
0: वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है, और दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, शाम ढले जब याद तुम्हारी आई है तन्हाई है, तन्हाई है, कि खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, और यूं तो दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, यूं तो ये दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, अपने सारे रूठ गए हैं सपने सारे टूट गए हैं, मेरी कब्र तलक जो चलकर आई है तन्हाई है, बात तुम्हारे दिल

0: गया था दुनिया की रौनक से, बात तुम्हारे दिल ऊब गया था दुनिया की रौनक से, मेरे खालीपन की जो भरपाई है तन्हाई है, तन्हाई है।
1: बेहतरीन रचना प्रस्तुत की सरिता जी ने, और अब मैं आपके सम्मुख देश की ऐसी गीतकारा को आमंत्रित कर रहा हूँ जो काव्य आकाश से श्रावणी माह में अपने गीतों की फुहार से आप सबको नहलाने के लिए आ रही हैं। एक माहिया कहना चाहता हूँ निवेदिता शर्मा जी के लिए, गीतों को गाती चल

0: स्वागत
1: वाह,
0: है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक मुक्तक के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत। हम चले जाएंगे, कहानियाँ रह जाएंगी
0: क्या बात है।
1: इस जहाँ में, मेरी निशानियाँ रह जाएंगी।

बहकती जा रही है ओ सखी बरखा सुहानी आ।

0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बेहतरीन बात।
1: और अब मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ वो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गीतकार। बहुत ही सम्मान के साथ मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 50 वर्षों से वो अपनी कविताओं के माध्यम से साहित्य की साधना कर रहे हैं। दोहा, गीत, गजल, माहिया, काव्य की हर विधा में वो पारंगत हैं। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां उन्होंने अपने गीत ना पढ़े हों। मैं दुष्यंत जी की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय जयसिंह आर्य जी को आमंत्रित कर रही हूं। गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने। आदरणीय जयशंकर,
0: धन्यवाद। चेता जी, सावन की बेहतरीन रचना प्रस्तुत की आपने, मैं भी सावन पर कुछ माहिए कहना चाहता हूँ।
1: स्वागत है सर।
0: क्योंकि गर्मी का जितना तांडव जनमानस ने झेला, उस सुकून की बूंदें पड़ी हैं सावन में। देखें, ऋतु सावन की आई, ऋतु

0: वाह वाह वाह वाह।
1: और देखें बचपन में हमने कागज की नाव चलाई पानी के अंदर, एक भैया देखे बहुत छोटा चंद है, दूसरे से भी छोटा चंद, मस्ती के पल चूमी मस्ती

0: पर चढ़ता यौवन।
1: वाह वाह
2: वाह वाह।
0: रिम झिम बू

0: एक नाव तरानी है
1: वाह वाह
0: सावन का,

0: बिजली अंतिम फिर कहना चाहता हूँ।
1: स्वागत है।
0: धड़कन धड़कन अब तो घन घोर घटाओ सी, धड़कन धड़कन

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सावन पर गीत सुनाया आदरणीय जयसिंह आर्य जी ने। और सावन पर इतने सुंदर गीत और इतनी अच्छी गज़लों के साथ ही हमारे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लेकिन मैं चार पंक्तियां जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर बुलंदियां हासिल करनी है तो हमें क्या करना होगा, कि सूरज सा दमकना है तो जलना सीखना होगा, और चंदा सा चमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, राहों पर गिर गिर कर संभलना सीखना होगा, संभलना सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर जयसिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर नवोदिता शर्मा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मेणा।

0: 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे ये सुविधा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंप कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की

0: अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए IIT, ISM, IIM रांची और XLRI के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित

0: विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज़्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2020.

0: ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का पांचवां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था, ने जब से ये मुल्क की अवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का अयादा करने के लिए लोगों से अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नेज़ मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे जरिया है। वज़ीर आज़म ने यह कहते हुए इजहार मसर्रत किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं, क्योंकि ये इसकी 150वीं सालगिरह है। जम्मू कश्मीर में आज से तमाम 20 अजला में जज्बे हुब्बुल वतनी नुमाया तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक हफ्ते तवील प्रोग्रामों के सिलसिलों का आगाज हो गया है। इस साल की मुहिम खास तौर पर अहम है, क्योंकि ये भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साथ आया है। ये तकरीबात 17 अगस्त तक जारी रहेंगी, जिनका मकसद हुब्बुल वतनी और कौमी फख्र को फरोग देना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये तकरीबात कौमी यकजहती को फरोग देने, नेज आज़ादी की मुहिम और कौमी अलामत के बारे में काबिल कदर मालूमात हासिल करने में एक नुमाया संग मील की हैसियत रखती है। बड़े पैमाने पर वंदे मातरम पर दस्तखत करने, तिरंगे की रैलियां, नुमाइशें, सकाफती प्रोग्राम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मुनक़द किए जाएंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुब्बुल वतनी और अवामी शिरकत की सरगर्मियाँ ज़िला हेडक्वार्टर्स, सब डिवीजन्स, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायत सतहों पर मुनक़द करने की मंसूबाबंदी की गई है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: JPSC

0: बताइए बताइए
1: ना ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: हमको बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, मोना सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

पहले जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
0: जय। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,00,00,000

0: मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने दो बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे, तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, और बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत रचना की ओर। यह गीत है कैसे आए, फिल्म नास्तिक से बेहतरीन रचना। ये फिल्म नास्तिक फिल्म 1954 प्रदर्शित फिल्म रही है, और आवाज़ लता मंगेशकर की और गीत फिल्मिस्तान बैनर तले गीत हैं, और संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

यह साथियों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। और यह गीत वाकई बहुत ही प्यारा है। विधि का विधान फिल्म से बहुत ही सुंदर रचना है और यह रचना वाकई खूबसूरत है। विधि का विधान, फिल्म वीर भीष्म, आवाज प्रदीप की है। और यह फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है। वीर भीष्म और सी रामचंद्र का संगीत से सजा खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना।

बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत जो आने वाला है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत है। घिर घिर के आसमान पार, बावरे नैन फिल्म से शानदार रचना, आवाज़ राजकुमारी की है। ये फिल्म बावरे नैन 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत रोशन का। आइए सुनते हैं खूबसूरत

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन रचना के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत रचना है ये गीत, वाकई बहुत ही लाजवाब है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म भाई बहन से शानदार रचना, जो 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

जी हाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत दिल को तेरी तस्वीर फिल्म दास्तान से, ये शानदार रचना। फिल्म दास्तान 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और सुरैया और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं

जी हाँ, दिल को भाए दिल को, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत की ओर। यह गीत वाकई बहुत ही शानदार है और ये गीत के बारे में हम बता देते हैं। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, फिल्म श्री 420 से। यह शानदार रचना आशा भोसले और मन्ना डे और साथ 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और ये गीत शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं और अब पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ED जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलीविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत

करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनो।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी?
1: तुमसे नहीं,

0: बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, भोली जनता भोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
0: जय। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे, तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थयात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज

खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। वसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से। अब आइए आपको

आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में हम दिल दे चुके फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में हम हो गए आपके इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं एस पी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत।

हरिहरन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

1942 अलव स्टोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी कुमार सानू की। अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। आवाज़ है उदित नारायण और साधना सरगम की। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत और गज़ल अब यहीं समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और प्रस्तुत है नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संबत 1948, श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर। देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी होगा 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे और 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 से। चिंतन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर लेकर आएंगे हम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत भरी गुड मॉर्निंग। समाचार प्रभात होंगे प्रातः 8 बजे और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। अवर गेस्ट ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से। प्रातः 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:10 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर मंजरी होगा दिन में 11:30 से। महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दिन में 12:10 पर। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:10 पर। एक बजकर 40 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रातः के 5 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को

0: प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाली इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन का अनावरण किया गया। निगम ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी माने। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों के अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद उन्होंने बताया कि कथित अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। इस कार्य योजना में 21 मुख्य विषय शामिल होंगे, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पलायन और रोजगार पैदा करना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों की खास स्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीतियां बनाई जाएंगी। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक EOD अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शौखन, मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास